हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बज कियो घट कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान घट घट के पढ़ पढ़ की जान जब उदकरख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जमिया करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम

कब को पयो जन्म तरहा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सबहू कैद सुनाए कब वाच दोहरा ठाड़ पहो मैं जोर कार बचन कहा सरन आए पंत चल तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत अंत लहेंगे मुगत फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरुष की देह मो कोटक बिस्न महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के ते राव सास करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत सुरग बा सुरग बुर करा सगरी पुरी समेत चाओ पई जो यह कथा सुने रगावै दुख पाप तिह निगट न आवै बिसन भगत की ए फल हुई आद व्याद शुवै सकै न कोई संबत सत्रह सात पचावन हार वदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल परी लहु लेह सुधारा दोहरा नेत्र तोंके चरण तार सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूरण की ओ राग बर कथा प्रसांग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने श्री अस्पान कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तू हे बखाने दोहरा

पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल पिच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब से धारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित राख उर तहारो ताम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जो की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया पावड़ी जिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे सुनकै जमके दूत नाय तेरा छड जाहे भाव जल बिखम सगाहो गुर सबदी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुन गुण गोबिंद गाहे सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए ने आवै तो दियाहे श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जाप गुर नाओ नेत्री सदगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सदगुर सेती रते आओ दरगह पाइया ठाओ कहु नानक कृपा करे जिसनो एह वात दे जाग मह उत्तम काढ़ी अहे विरले के ई के महला पंजवा।

दंडावत बंधन अनकबार सर्वकला समर्थ डोलन ते राख प्रभु नानक दे कर हाथ सुकाहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सूही महला पंजवा

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

तै जिन हुक्म सब सृष्ट सवारिय ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जाप कल सुजास नानक गोर सहज जोग जिन मानियो गुण गावह नवनाथ धन गुर सा।

0: अमय दृष्ट शुभ करै हर आग पाप सकल माल।
1: माल पाठ पूला ही करना जिवें पंक्ति आप जी ने, यह साध संगत जी सवैया तकरीबन सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो भी रागी सिंघा दे बहुत गुरमुख प्यारे जिहड़े पढ़दे है, पर ध्यान रखना साध संगत दी मात्रा दा। इह असीं सुण के जदों कंठ करदे आ ना फिर बहुत सारियां गलतियां साडी जुबान ते चढ़ जांदियां। सो इस करके ध्यान दे नाल अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल माल। माल पाठ पूला ही करना, इहनूं मल नहीं करना। हांजी।

0: पुरख सेवर साचा जाका एक नाम अशाल संसारे दिन भगत भवजल तारे सिमरह सोई नाम प्रधान तेत नाम रसक नानक लहना थपियो जेन श्राव सिद्धि कावजन कल सबुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साख तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण उब अर पश्चिम जय जयकार जपंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदाया उल्ट गंग पश्चिम तरिया
1: बरदाया दद्दे नू कन्ना जिथे लगा इहदे तो अगे ईड़ी नू सिहारी ते ऐड़ा ओ वाधू लगेगा जइए दे उचारणा दे विचों जिवें ग्यानी जी ने उचारण कीता है आवाज उही रहेगी पश्चिम जिवें ओ साध संगत जी पश्चिम दा चचे दी आवाज इन्नी जिन्नी उचारण दे विच आप जी ने सुनी है चरणा दे चचे दी इसे तरह ही आवाज लाउणी। हांजी।

0: आकार ज्योत जग मंडल करियो, जह कह तह पारपूर शब्द दीपक दीपायो, जिह सिखह संग्रहयो तात हर चरण मिलायो, नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहणे संग हो
1: अवतरया।
0: नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहणे संग हो, गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पा शरण तो, जप तप सत संतोख इख दर्शन गुर सिख है, शरण परह ते उबरह छोड़ जमपुर की लिख है, भगत पाए पारपूर हृदय उचरह कर तार, गुर गौहर दरियाओ पलक डुबन त्यह तार, नानक कुल निम्मल अवतरयाओ गुण कर तार उचरह, गुर अमरदास जिन सेवयाओ तिन दुख दरिद्र पर हर पर।
1: जिन पाठ से हलंत नहीं ना हैगी
0: चित चितवो अरदास कहो पर कह पे ना सको, सर्व चिंत तुझ पा

0: हमे रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै
1: दुरत
2: उपजै
1: दूरे पढ़ हाँ जी
0: मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पाए औ दिंत हर मग ना हुट्टै
1: हुट्टै पाठ कस के करना हुट्टै नहीं कहना जिवें उच्चारण कीता हुट्टै
0: संजम सत संतोख सील सन्नाह मफुट्टै सतगुर प्रमाण बिद नै सिरयो जग जस तूर बजायो
1: बेद नै इनू नखेड़ के उच्चारण करना बेद बोल के नै सतगुर प्रमाण बेद नै सिरयो ऐदा बिदना इकट्ठा नहीं पढ़ना सतगुर प्रमाण बेद नै सिरयो जग जस तूर बजायो
0: गुरु रामदास कल उच्चरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो तन तन सतगुर अमर

0: कोशिश है, साड़ी आवाज दी सेद चले आओ पहुंच जाओगे घर तक। तो साहब कहंदे ने धर्म ग्रंथां नूं मन लेना, ते मन के उन्हां नूं हिरदे विच धारण करके उन्हां दा पाठ पठन रोजमर्रा करना, ए तेल पाना है दीवे विच। भव वट्टी इत तन लाईए, भावना दी वट प्यार दी बाती ला। जिसनों रोज रोज याद करिए पाठ दे राही बाणी दे राही, आखिर याद एक दिन ते प्यार बनेंगे बनेंगे। याद ही प्यार बन दी है। इस दिते मैं उदाहरण देना होना, जैसे खादा होया भोजन एक दिन खून बनता है, बार बार कीती हुई याद एक दिन प्यार बन जाती है, प्यार बन जाती है। रोज रोज दा पाठ, रोज रोज दी ये धर्म ग्रंथां दी कमाई, एक दिन प्यार बन जाती है। तो पाठ करना धर्म ग्रंथां दी, इस रचना नु इस बाणी नु मनना ते जप करना, ये तेल पाना है। पढ़ना ते जपन विच थोड़ा जिहा अंतर है। मैं पढ़ना है इस वास्ते मैनू याद होवे, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू इस दे अर्थ बोध आ जान, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू पता चल जाए किस अवतार किस भगत दा ये बोल है, पर मैं जपना है इस वास्ते जपना है कि मैं शब्द दा रूप हो जावा, इस बाणी दा रूप हो जावा। जपन लग्यां बाणी दा वाक दा कंठ होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि उत्थे जपना उसनू कहंदे ने कि जबान उचारण करे ते फिर मन सुने। पढ़ना उसनू कहंदे ने मैं सामने देख रहा ध्यान बाहर है, पर जपना उसनू कहंदे ने हुण ध्यान अंतर्मुखी है, हुण सुनना आरंभ हो गया। मैं पढ़ना इस वास्ते है बाणी दी समझ पै जाए, मैं जपना है इस वास्ते कि मैं बाणी दा रूप हो जावा, प्रकाशमयी हो जावा। पोथी पुराण कमाईए, सच बूझण आण जलाईए, ए तेल दीवान साहेब ले मिले। जैसे तो भावना दी बाती पाएगा, प्यार दी पाती पाएगा, और धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दा तेल पाएगा, यकीन जानो जिस भी अवतार दी शमा तेरे नाल छो गई तू रोशन हो जाएगा, प्रकाशमयी हो जाएगा। सारे रोग भज जाणगे, अंधेरा ही रोग है, अंधेरे दे नास होंदिया होया सारा स्वप्न उजागर हो जाएगा, सारी दौलत तेरे सामने आ जाएगी। पर अंधेरे दे होंदिया होया सारा स्वप्न डक जाएगा, सारी दौलत ते पर्दा पै जाएगा, सारे सुखां ते पर्दा पै जाएगा, सारे आनंद ते पर्दा पै जाएगा, और अंधेरा रोग दी तरह भयंकर भटकना दी तरह ठोकरां दी तरह तेरे सामने आ जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसे ही चानने दी औषधि समस्त संसार विच वंडदे रहे, और कहंदे रहे अंधेरा रोग है, अंधेरा रोग है, रोशनी औषधि है, ज्ञान औषधि है। इस वास्ते हर बशर दी रसना तो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। साहिब कहंदे दर्द होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वेर। संसार दे चितनिया औषधियां मौजूद ने, पर दुख मौजूद ने, रोग मौजूद ने, कारण औषधि एक रोग नू दवांदी है दूसरे नू पैदा कर दी है, दूसरे नू दवांदी है तीसरे नू पैदा कर दी है। इस सच्चाई नू हुण डॉक्टर वैद कबूल करन लग पए ने, ठीक है जिस रोग दी पीड़ा हो रही है उस रोग नू दवा दिता, और जितनी मिकदार दे चे पीड़ा एक रोग दबदा है इतनी मिकदार दे चे दूसरा रोग पैदा होंदा है, ओदी पैदाइश होंदी है। तो सारा जीवन रोग विच बतीत हो जांदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने एक ऐसा दारू भी है, ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्ये रोगां घाण। ये रोगां दा सारा कहानी खत्म हो जांदा है, जन्म जीवन ते मरण ते नहीं मिट जांदे ने, यही रोगां दा खान है, यही रोगां दा इकट्ठ है, और ये सारे दे सारे नाश हो सकदे ने आत्म प्रकाश नाल, आत्म चिंतन दे नाल, ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

एक ओंकार सपना करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अवतारी पुरुषानु सुते सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिनू तखल्लुस कहते ने, कोई खासियत देख के कोई अहमियत देख के उनानु नाम दिता जाता है। समुची जिंदगी मर्यादा दिच बजी हुई देख के जगत दे मुंह निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है तमाशा है, जन्म नफा भी खेल नुकसान भी खेल, जवानी भी खेल बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया जानिया और जीविया, देशवासियों ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस कीता अनुभव कीता जगत दुख है, जगत रोग है, जगत मिथे है, जगत ते वगदे हुए हंजू ने, जगत ते एक पीड़ा है एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहन लगा जगत एक पीड़ा है एक दुख है एक रोग है, और उस रोग दा समाधान लेके उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नु स्वस्थ करदा रहा, समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया है जो रोगियां लई वैद है, इसते कुल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नु समझना होवेगा जगत एक पीड़ा है। तो जगत तो मुराद की लिए मनुख, मनुख स्वयं एक पीड़ा है, मनुख ही समस्या है। ए नहीं कि मनुख दियां समस्यावां ने, नहीं मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दियां वेदनावां ने मनुख दे दुख ने, ऐसा नहीं मनुख खुद ही एक दुख है, मनुख खुद ही एक पीड़ा है, मनुख खुद ही एक वेदना। जद मनुख है तो पीड़ा है, मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इस दी शुरुआत इंज कर देने जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देंदा। जन्म भी पीड़ा है, जीवन भी पीड़ा है, मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखा नु जन्म सुख है, जीवन सुख है, सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्म दिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है, जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है, मौत पीड़ा है इसनु भुलाना है, मौत वेदना है इसनु गलत करना है। मौत ही दुख है ए चेते ना आवे। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए, कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए, जीवदे जागदे मनुख दिखाई देन कब्रिस्तान ना दिखाई देन, हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन जल्दियों या लाशां ना दिखाई देन।
और घर विच कोई मृत्यु हो गई है तो कोशिश कीती जांदी है सारियां दे अंतिशकरण विच मौत बैठ जाए उस तो पहले इस नूं घरों कढ़ो, इस तो पहलो कढ़ो, जला के खाक कर दो। जीवन चेते रहे, जन्म चेते रहे, मरण भुलाओ भुलाओ। ये पहला अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते आया जिसने मनुखता दे सामने बुलंद वांग होके कहा, जन्म दुख है। शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्मदिन मना रहे हो और दुख दे जन्म दी खुशियां मनांदे हो यहीं नच रहे हो, टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख नु दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनु ये समझ आ जांदी जन्म दुख है, जन्म दुख है। जन्म दा बोध नहीं है इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है, दुख दा बोध नहीं है इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं। और धार्मिक दार्शनिक ऐसा कहते ने जो मेरी समझ देच नहीं ओ नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया देते नहीं है। होवेगा परमात्मा, होवेगा किधरे सुख, होवेगा दुख, होवेगा कलेश, पर मेरी समझ देच नहीं तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है, ना सुख दा बोध ना दुख दा बोध, ना दिन दा ज्ञान ना रात दा ज्ञान, ना सर्दी महसूस होंदी है ना गर्मी महसूस होंदी है। पत्थर ही सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल बहुते दिमाग मनुखां दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर ने। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नु क्या कहिए, इस दिमाग नु क्या आखिए, इत पत्थर है। जो मेरी समझ देच नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया देचते नहीं है क्योंकि मैनू उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज दी मैनू समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया च। अगर परमात्मा भी मेरी समझ देच नहीं है तो कम से कम मेरी दुनिया दे परमात्मा नहीं है, भावे होवे भावे जगत दे है पर मेरी दुनिया दे नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुती मनुखता तो बिना जी रही है और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लीए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदिया होया परमात्मा तो बिना जी रही है। जैसे अंधा सूरज दे होंदे होया सूरज तो बिना जीवंदा है, रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल डुल के पै रहा है, पर अंधा इतने प्रकाश दे होंदे होया प्रकाश तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदे होया बहुत ही मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए। समझ दी दुनिया आरंभ हो गई, समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे है। केड़ी समझ? जो मेरी समझ देच नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ देच नहीं, जो मेरे बोध देच नहीं ओ नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहिंदे ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होंदी है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होंदी है।

दिखाई देंदा, जैसे जन्म तो जो अंधा है उनु अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, पापियां नु पाप दा कोई बोध नहीं, मूर्खां नु मूर्खता दी कोई समझ नहीं। गलतियां बार बार जो हो रही ने, गलती गलती नहीं दिखाई दे रही, ये इस तरह जैसे जन्म दे अंधे नु अंधेरा नहीं दिखाई देंदा। अगर गलती महसूस होने लग पई है, भूल दिखाई देने लग पई है, मूर्खता महसूस होने लग पई है, तो धार्मिक अनुभवी पुरुष कहंदे ने हुण इसनु मूर्ख नहीं कहना चाहिदा, हुण इसनु अंधा नहीं कहना चाहिदा। क्यों? इसनु अंधेरा ते दिखाई देने लग पया, वरना अंधे नु ते अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा। हुण इसनु मूर्ख नहीं कहना चाहिदा, क्योंकि इसनु मूर्खता गलतियां भटकन पाप दिखाई देने लग पैना। पाप दिखाई दिस दिन देंदे ने, पुन दी तड़प उसे दिन पैदा होंदी है। गलती दिखाई जिस दिन देंदी है, सुधार दी तड़प उसे पीड़ा कल कलेश जिस दिन दिखाई देंदा है, परमात्मा दी प्यास उसे दिन पैदा होंदी है, उस तो पहला होंदी नहीं, किसी कीमत ते नहीं होंदी। इस वास्ते देखदे हां, अनंत अवतारी पुरुष आए ने समझान लिए, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये ठीक है कि ऐसे जमांदरू अंधे बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, जिन्हां नूं अंधेरा भी ना दिखाई देंदा होवे, बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने ऐसे अंधे जिन्हां नूं अंधेरा ना दिखाई देंदी होवे, पर ऐसे अंधेयां नाल संसार भरिया पिया जिन्हां नूं अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, अपने कीते हुए गुनाह नहीं दिखाई देंदे, भुल्लां नहीं दिखाई देंदियां, सवेरे तो शाम तक भुल्लां विच जीवना, रात दी आरंभता तो समाप्ति तक गलतियां विच जीवना, सवेरे उठदियां सार जागना, गलतियां विच जागना, गलतियां विच जीवना, और रात नूं सौण लगियां इंज कह लो भुल्लां विच सौणा, नींद भी भुल विच, जागृति भी भुल विच। ऐसे मनुख दा सौणा ते जागना व्यर्थ भटकना, ऐसे मनुख दी नींद विच सुपने भी ऐसे भयंकर आवणगे कि इह सुत्ता होया भी तड़पदा रहेगा, बेचैन ते व्याकुल रहेगा जैसे कि दिन दे समय। शिख सादी साहब कहा करदे सन, मूर्ख मनुख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना। क्यों? बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, और तो कुछ प्रगट करने का वसीला है नहीं। देखते हाँ मूर्खता प्रगट नहीं आती, सुन की रे है मूर्खता प्रगट नहीं आती, चल किड़े पासे रे है मूर्खता प्रगट नहीं आती, मूर्खता प्रगट आती है बोल के। मूर्ख का सब तो वड्डा गुण है चुप रहना, पर जे किधरे के चुप रहना मेरा गुण है, समझ लो मूर्खता उसकी समाप्त हो गई, मूर्खता उसकी खत्म हो गई, उन्हों को झलक मिल गई। सतसंग का यही लाभ है, सतपुरशां की सोबत का पाठ पठन का यही लाभ है, किसी दिन मनुख नूं अपनी मूर्खता दिखाई दे जाए। ये जिहड़ी आम कथा कहानियां सतसंग विच गल कीती जा रही है, परमात्मा दिखाई दे जाए, परमात्मा दिखाई दे जाए, नहीं ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, रस्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं चल रहा, ठीक है मैं चल रहा।

0: सतनाम करता पुरुष निरभो निरवैर कालमूरत अजोनी सेवं गुरु प्रसाद।
1: गुरु रूप सत्संग जीओ पते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। मनुख एक ऐसा जन्म है, सहजे सहजे मनुख कई तरह की होर जिंदगी नो जन्म देता है। मनुख दे अंदरों ही समाज का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही राजनीति का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही धर्म का जन्म होया है। समाजिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, राजनैतिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, और धार्मिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने। मनुख का जन्म होया है, फिर मनुख ने समाज नो जन्म देता है, मनुख ने राजनीति नो जन्म देता है, मनुख ने धर्म नो जन्म देता है। राजनीति ते समाज नो इस वक्त ना ली, क्योंकि आपां धार्मिक मंदिर दे च बैठे हैं ते महान धर्म दे सागर, धर्म दे केंद्र धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म दी करांगे। जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च इक कद नहीं, हजारां च सैकड़ां च इक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हो गुरमुख होए पछान, कोटन में नानक को नारायण जय जी। गुरु तेग बहादुर करोड़ां च कोई एक कद नारायण जिस दे चेते दे च है, नारायण जिदी समझ दे च है। गुरुद्वारे बैठा है, गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है ना। गुरु दी अजमत दा पता ना, गुरु दी महानता दा पता ना, गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलदा और हर वक्त बोलदा, जो मेरी समझ दे च नहीं होवेगा परमात्मा है, परमात्मा जर्रे जर्रे च है, रोम रोम च है, होवे पिया, जो मेरी समझ दे च नहीं है। दूसरा जो मेरे चेते दे च नहीं है, जो मेरी सिमृति दे च नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम दे च परमात्मा, मेरी सिमृति दे च नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरशां ने आख्या है याद करो, चेते करो, संस्कृत च कहिंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते है मैं दोहरावा शब्दां नूं, असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते, भुल गए। भुलिया क्यों? समझ दे च नहीं। कहिंदे ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहने दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है। समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु दी जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन दी समझ नहीं, इनू परिवार दी समझ नहीं। मनुख दी जिंदगी दसदी, इनू निरंकार दी समझ नहीं है, नहीं है। इहदा व्यवहार दसदा, इहदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इहदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा दी समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे जन्म ते हो गए, ते हुण मैं इह वी अर्ज करां, जन्म बच्चे दी तरह आउंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह दे महान रूहां दा जन्म भी होया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਓਤਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਮਝ

0: वजन वध जाता है, लेकिन तैरदी हैरानगी है, जिंदा डुबदे ने मुर्दे तैरदे। पानी का मनुख नाल भी वैर है, अगर मनुख नाल वैर है तो फिर मुर्दे भी डुबने चाहिए। मुर्दा तो नहीं डुबता, जीवदा मनुख क्यों डुबदा है? ये अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा बैठता है, ता डुबदा है। लोग इसका तवाजन डामाडोल कर देता है, सीमा तो वधिया होया अहंकार इसका बैलेंस बिगाड़ देता है, सीमा तो वधी हुई वासना इसका संतुलन डामाडोल कर देता है, डुब जाता है। हम दे खाते डुबे आए, तो डुब गए। डुबे की पहचान की होगी? उदा नितनेम डुब गया होगा, नहीं करता होगा। रहत वै डुब गई होगी, अमृत वेला डुब गया होगा, गुरु भक्ति डुब गई होगी, सील संयम डुब गया होगा, दया विशालता सम दृष्टि डुबी हुई होगी। हम देखते डुबे, महाराज कहते मैं देखना डुबे हुए, दुनिया डुबी हुई है, गर्क हुई है। डुबे की पहचान की है? उदे को नितनेम नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, जप तप नहीं होगा, सील संजम नहीं होगा, दैवी गुण नहीं होने, डुबे होगा, गर्क होया होगा। कदी कदाई कोई एक कद मनुख अपना तवाजन अपना बैलेंस ठीक रखता है, डुबदा नहीं, उसे नो असी कहने निर्लेप है, कमल की तरह। पानी वधदा कमल होर उपर उठता है, धन घर दे च वध रहा है, डुबदा नहीं पिया, प्रभता वध रही है, डुबदा नहीं पिया। नहीं तो कोई प्रभता च डुबे हुए ने, कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने, कोई रूप रंग दे डुबे हुए। हम दे खाते डुबे, महाराज कहते मैं देखना दुनिया से डुबी पई। धार्मिक जीवन से कुछ गुणा देखना है, सूरज अपना नूर वंडदा है संसार दी किरणा दे रहा, परमात्मा का प्रकाश हिरदे पहुंचता है गुणा दे रहा। गुणा तो पता चलता है, पहचानना है। सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा देने, सब गुण तेरे मैं ना ही को, विण गुण कीते भगत न हो। मेरे घर दे चानना है, पर चानना ते सूरज दा मेरा ते, अगर हृदय दे गुण आ जान, गुण परमात्मा दे ठीक है। गुण रोशनी ने, औगुण अंधेरा, जितने औगुण होंगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होंगे उतना ही उदी जिंदगी दे चानना होगा, प्रकाश होगा। और जीवन सही मार्ग पे चल रहे होगा तो मैं फिर दोहरावा, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, तो चल दी की है, सुरत चल दी है। तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गया, पैर चल के आ गए ने, इहदे नाल हाजरी असी भरी है। असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जाती है, शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हाथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन, गुरु की हाजरी पे भर देन, एक दो बंदे आउणगे जिन्हां गुरु की हजूरी नसीब होगी। कलगीधर पिता दे रसना तो यह बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर, शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उठे नहीं सी, ध्यान उठे नहीं सी, सुरत शब्द विच नहीं सी, हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्हों का ध्यान उठे सी, गैर हाजर हाजर। चलना ते सुरत ने ना, सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी तरह दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ में आवे। सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। स्रोत ही शब्द तो बने हैं सुरत, भई ये ते स्रोता है, ये ते सुरत दे च है, सुन रहे हैं। एक सैकेंड दे तीन घटनावां घटदियां ने एक कोई समय। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये ते स्रोता है, सुरत दे च है। अगर ये सुरत दे च है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये तीन घटनावां एक सैकंड दे घटते हैं। जिस वक्त मनुख सुनता है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना एक सैकंड दे घटती है, एक सैकंड दे घटती है। इधर जबान ने आख्या वाहेगुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुनिया, इधर मन नु समझ आ गई, इधर मन नु समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण है, ज्योत दे ज्योत हो गई, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी एक छिन्न विच है, निर्माण कीर्तन गावो कर तेका निमक सिमरत जित छूट है। निमक, निमक एक सैकंड है। एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। एक छिन एक निमक, इन अतकथनी ना समझ लेना। किसे कमरे विच 50 साल का अंधेरा हो, गुप अंधेरा हो, उस अंधेरे नूं कढ़न वास्ते 50 साल लगणगे? नहीं, एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई दे गया। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा के इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगणगे? नहीं, एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर ना। एक दम ही आज है, बाबा फरीद कहते ने, आज मिलावा शेख फरीद टाकम गूंजणिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीवां, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी? मैं भोजन हुण छका, हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है? मैं नाम हुण जपां, फल अगले जन्म विच मिलेगा? साल दो साल बाद मिलेगा? इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। ये भी मैं अर्ज करा, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज का तत् छिन। टुक दम कर आरी जो करो, एक दम विच किधरे टिक जाओ हाजर हजूर खुदा। मैं पानी हुण पीवां ते प्यास महीने बाद मिटेगी? मैं रोटी हुण खावां ते भुख कल मिटेगी? लोकी कहिंदे ने कोई नहीं, सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जांदी हौले हौले। बंदे नूं ताप चढ़े होवे बड़ा जोरदार ते वो डॉक्टर नूं कहिंदा है जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, महीना दो महीना तड़पदा रहा, कहिंदा छेती कर, जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़े होवे हौले हौले हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता। ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है। मनोचिंतक ऐसा कहने, लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होकर जीवन देन और निराश हो जाते हैं भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने, ऐ दवाई ले लो, ऐ दवाई ले लो, उन्होंने अंदर निराशा है। रोग दे जीण की आदत बन गई, विकारां दे जीण का सुभाव बन गया, ठीक होने का ख्याल भी नहीं, और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पाई। नहीं ठीक हो सकांगे, ये जीवना पैदा जैसे जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे, फ्रायड ने कहा है, हंकार देच, काम देच, क्रोध देच, लोभ देच जीना पैगा दा कोई इलाज नहीं। थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन कीता जा सकता है, बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकता, जीवन नूं छड़ नहीं सकते, इन्हां दे जीवना ही पैगा। यूरोप के पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्रायड ने बड़ा निराश किया है, जीवना ही पैगा, इहदे जीवना पैगा। उन्हें ऐलानिया किया भारत के संत गलत कहते ने, मन विच राम है, कहिंदा नहीं मन विच काम है, मन विच निरंकार है, कहिंदा कता ही नहीं मन विच हंकार है। पुंज कहिंदा है, कहिंदा मैं मन नूं भुल के देखिया सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं है, मैं मन नूं भुल के देखिया सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं है, मैं मन नूं भुल के देखिया कहिंदा सिवाय काम तो होर कुछ नहीं। एवें कही जांदे राम है मन तों जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। एक सीमा तक वो ठीक कहिंदा है, एक सीमा तक, जैसे सागर दे उपर उपर ते लहरां ने या कुछ लभण गया मछलियां ने संख ने सिपियां ने मोती ते गहरे कर दे किसे किसे दे हाथां उपर उपर ते वाकई मन दे ख्वाहिशां ने कामनावां ने वासनावां ने जो बहुत गहरे डुबकी ला लैंदे ने उन्हां नूं राम नाम दा हीरा मिल जांदा है। तन में मनवा मन में साचा सो साचा मिल साचे राचा, तन विच मन है मन विच सच, तन विच मन है मन विच प्रभु है, मन तों जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। खेड सारी पहचानण दी है, पहचानण दी है, जिसनों मैं नहीं जानता वो नहीं है, जिसनों मैं नहीं समझदा वो नहीं है, जो मेरे चेते च नहीं वो नहीं है, जो मेरी सिमृति च नहीं वो नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते, पर उस बच्चे की तरह जिसने अज चलना सीखा, दो साल बाद ढाई साल बाद डेढ़ साल बाद बच्चे चल रहे पैर पुट गए खड़े हो गए, कि चार पांच साल का बच्चा हो बच्चा चले ना, मां बाप को चिंता हो जाती है, गल की है बच्चा खड़ा नहीं होता पैर नहीं पुटता, चार साल का हो गया पांच साल का हो गया डॉक्टरों को ले जाने वैद्य को ले जाने, तीन साल का हो गया चार साल का हो गया मुंह अक्खर नहीं निकले बोलता नहीं, मां बाप को चिंता हो जाती है। जिस दिन बच्चे की जबान तो पहला बोल निकलता है अक्सर मां ही निकलता है, घर में खुशियां मनाईया जाए, घर में प्रसाद वंडते हैं, मिठाइयां वंडते हैं, नचते हैं टपते हैं, बच्चा बोलन लगता है। जिस दिन बच्चा कदम पुटे, बच्चे ने कदम पुटे चलन लगते हैं, चलो एक कदम ही सही कदम तो पुटे खड़ा तो हो, कोई तीस चालीस साल तो गुरुद्वारे आ रहे हो अजे भी सुरत नहीं चली शब्द की तरफ, यकीन जानो गुरु नूं भी चिंता हो जाती है गल की है, इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे, पचास साल हो गया गुरुद्वारे आउंदे अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपदे, गुरु नू भी चिंता हो जाती है बोलना ही नहीं आया, बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रव रही, इन्हू बोलना ही नहीं आया, ये बोलता ही नहीं, पचास साल का हो गया बोलता नहीं, फिर ये तीस पैंतीस साल हो गए ने इन्हू चलता ही नहीं, चलना तो सुरत ने जपना ते रसना ने, रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ, जपना रसना ना लो, और जपन दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है, गाविए सुनिए मन रखिए, जबान गायन करे ते मन सुने, मन स्रोता बने जबान वक्ता बने, अगर जबान वक्ता बन के मन स्रोता बन गया ये पुरुष पहुंच गया, ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਤੇ ਬਣੀ, ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ, ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਿੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਲਬ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਠਦੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕੇਗਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਭੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਭੀ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਥੱਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਖੇਡ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਚੱਲੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣੇ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹੇ ਨਿਸਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਬ ਤੱਕ। ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤੇ ਪਰਵਾਸ ਮਗਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗੇ ਚਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ। ਭਗਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਲ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤੇ ਪਰਵਾਸ ਮਗਰ ਰੱਖਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਨੇਤਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਤੇ ਕਰੋਪ ਨੇ, ਮਹਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਗਾਲਬਨ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤ ਕਰ ਓਤ ਪੋਤ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਵਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪਵਨ। ਪਵਨ ਨਾ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪਵਨ ਕਰਕੇ। ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪਵਨ, ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ ਇਹ, ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾ ਬੇਗਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਪਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੜਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜੇ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵਨ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਸਣਾ ਜਦ ਸਕਦੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣ, ਪਵਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਵਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਕੁਛ ਹੈ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਖੈਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ 90% ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਦ, ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨੇ ਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਦ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਗੁਣ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜਮਾਨ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸੰਗੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਦ, ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨੇ ਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਦ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਭ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਖੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕੁੰਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆਖੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੰਡੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਗੜੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੰਗ ਹੈ, ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਧੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਦੇਖਵੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ, ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਹਿਵੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਣਵੇ, ਕੋ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਿਰਧ ਗੁਣ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੁਚਾ ਸਕਾਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਹਿਵੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਣਵੇ, ਕੋ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਿਧ ਗੁਣ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਮਨ ਮੇ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵਲਾਈਏ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਭੰਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੁਲ ਹੀਨ ਦੀਨ, ਕੈਸੇ ਬਹੁ ਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਮਨ ਮੇ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਐ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੋਂ ਲੇ ਕੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਮਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜਦ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਗੁਰੂ ਐ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਰਾਂ ਕਾ ਮਤ ਹੀਣ, ਅਸੀਆਂ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਨ ਸੀਰਤੇ ਪੈਗੰਬਰੀ, ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਜਮ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ, ਇਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵਕਤ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਗਿਆੜ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖੇ, ਇਹ ਭੇਡੋ ਇਹ ਬੱਕਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। गल तो इन्हें बुढ़ा बंदा कहिंदा मैं गुनाहां दा त्याग कीता है, पता ही नहीं गुनाह ही उसका त्याग करके चले गए। गुनाहां ने बैठना सी अखां विच, रसना विच, कन्नां विच, हत्थां विच, पैरां विच, इत्थे सारियां कुर्सियां टुटियां पईयां, बेचारे गुनाह कित्थे बैठा, कहड़ी थां ते बैठा। कहिंदा मैं गुनाहां दा त्याग पता ही नहीं। वक्त पीरी गुरगे जालम में शबद परहेज़। भाई साहब कहने मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, जो गुरु दी मत है वो मेरा मन कबूल नहीं करता और जो मेरी मत है वो गुरु नहीं कबूल करता। जो मेरी सोचनी है ये गुरु नू परवान नहीं है और जो गुरु दी सोचनी वो मैनू कबूल नहीं। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आई है, अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बो नायक की नायिका का आइए। अंग अंग टूटे आया है, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं, कन भी कोई नहीं, जबान भी कोई नहीं। इस वास्ते है मैं अर्ज करदा हुंदा है सारे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे ना होन ते पत्थर ते बंदे विच फर्क की है। पत्थर वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, पत्थर बोल नहीं सकदा, पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर कुछ कर नहीं सकदा। अगर मनुख परमात्मा नूं वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, परमात्मा नाल बोल नहीं सकदा, अपने बोल पुछा नहीं सकदा, इहदी सुरत चली नहीं परमात्मा दे मार्ग ते, कम से कम धार्मिक तल ते ते बंदा पत्थर ही। और की मैं दो शब्दों वास्ते माफी मंग लवां, बड़े बड़े इकट्ठ धार्मिक सम्मेलन में देखे ने, कोई एक अद मनुख बैठा होवे, कोई दो चार बैठे होवन, औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई दे। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी, मैं थले की सी, पर हुण इतना उछाल आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नूं कहा, सुने है तुसी कहिंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही है। सतगुरु कहण लगे केड़ी शक दी गल, इक्को ही ने, ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो फिर चलो। महाराज कहण लगे चलो हुणे ही चल, इशा दी नमाज पढ़दे हां, चल वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नूं भी नहीं सी, चल पैणा चल पैणा। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद, और नवाब दे नाल जा रहा है। बहुत सारियां नूं चिंता हुई, बाबे ने मजहब बदल लिया, बेबे नानकी मुस्कुराती रही। कहिंदे ने कृष्ण दी पहली भगतनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी वो द्रौपदी सी, जिन्हें श्रद्धा लेंदे, जिन्हें मुहम्मद साहब से सब तो पहले श्रद्धा लैंदी वो खदीजा से उन्हां दी पत्नी सी, जिसने सब तो पहले गुरु नानक से श्रद्धा लैंदी वो बेबे नानकी सी। इत्थों सिखी चली खदीजा तो इस्लाम चलिया, जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर देंदी इस्लाम नहीं बदलना सी, ये भी मैं अर्ज कर दिया। उन्हें कबूल कर लिया, मुहम्मद ये बोल थोड़े नहीं तो फुला दे लगते। मोहम्मद साहब भी कहने लगे खदीजा तू तो ठीक जाने, मैं तो चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया, मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलना। गुरु नानक कहिंदे ने हो आको बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जीओ, मैनू बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलना, पता नहीं रब की बोलना, पता नहीं परमात्मा की बोलता, जैसे मैं आवे कसम की वाणी कैसड़ा करी ज्ञान वे लाड़ा। ये श्रद्धा सब तो पहले बेबे नानकी दी सी, सिखी उत्थों चली। खैर बाबा मस्जिद विच पहुंच गए, कतार विच खड़े हो गए, इमाम ने रुकात पढ़नी शुरू की थी, सारिया ने सजदा किया, गुरु नानक खड़े खड़े रहे। जन्म साखी दे बड़े विस्तार नाल एक गाथा लिखी और वक् वक् ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर दे नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, झुके नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद समाप्ति तो बाद नवाब कहन लगा सब गल्ला ही गल्ला ने, राम एक होया अल्लाह एक होया। तुसी किया सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी ते नहीं पढ़े। महाराज कहन लगे साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, तेरे नाल मिलके घोड़े नहीं खरीदने सन। तू ते काबुल विच घोड़े पिया खरीद रहा, आपां घोड़े नहीं खरीदने, आपां ते नमाज पढ़नी सी। साडा वायदा यह सी तेरे नाल नमाज पढ़नी, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने। तू घोड़े खरीदा पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी? हैरान हो गया नवाब, नमाज पढ़दा घोड़े पिया खरीदा सी। कोई मंदिर दे पूजा पाठ करदे अपने घोड़े खरीदा, कोई गुरुद्वारे बैठा कथा कीर्तन सुनदे पाठ करदे अपने अपने घोड़े लोग खरीदते, कौन गुरु नाल जुड़ता? सब अपने अपने घोड़े खरीद रहे, अपनी अपन गलों उलझे हुए होंगे, अपने अपने झमेलिया फसे पे होंगे। कभी कदाई कोई पुरुष प्रभु की उस्तति दे जुड़े। हुण इत्थे प्रश्न पैदा होंगे, वो हाथ केड़े ने जिहड़े सेवा करदा, वो पैर केड़े ने जिहड़े चल पैंदे, वो जबान केड़ी, वो अखां केड़ियां ने। गुरु नानक ने उन्हां दा खुलासा कीता है, भय के चरण। मनुख दे अंदर समाज दा डर है, कानून दा डर है, लेकिन परमात्मा दा डर नहीं। साहिब कहिंदे टुंड आए दे कोल हाथी कोई नहीं, परमात्मा दा ते डर ही नहीं। समाज तो डरदा है, कानून तो डरदा है, रब दा ते कोई डर ही नहीं। परमात्मा दा वाकई डर नहीं। देखो गोलक नूं भी ताले लाए ना, तीन तीन चार चार लाए, इहदा मतलब चोरी दे इत्थे भी डर है। कई दफा ऐसा देखे अगर टिकटां ते जोड़े ना रखो तो पैरी नंगी जाना पैंदा, घर जुत्तियां भी नहीं लगदी। कोई रब दा डर थोड़ी, कानून तो डरदा, पुलिस ते नहीं देख रही, समाज तो डरदा, दुनिया ते नहीं देख रही, परमात्मा तो नहीं डरदा जो हर जगह देखता। बेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी सदा वेखदा। भय के चरण कर भाव के, पैर भावना दे बना। भावना शब्द दो अवस्थावां तो बनता है, प्रेम तो ते भरोसे तो। जिस ते भरोसा है उस नाल प्रेम है, जिस नाल प्रेम है उस ते भरोसा है। कई दफा बच्चे नाल प्रेम ते बड़ा है, पर बच्चे ते भरोसा नहीं, उसकी हर गल ते भरोसा से थोड़ी कर दे। बच्चा बच्चा भरोसा नहीं होने वास्ते। कई दफा किसी ते साडा भरोसा ते पक्का है, भाई बंदा काबले एतबार है, भरोसे ही हो गए, इस ते भरोसा किया जा सकता है, पर उहदे नाल कोई प्रेम का संबंध ही नहीं, सिर्फ भरोसे ही हो गए। भरोसा ते प्रेम जब दोवें इकट्ठे होंदे ने उहनूं कहिंदे ने भावना। कर भाव के, हाथ बना भावना दे, पैर बना पै दे। परमात्मा दा भय होवे पैर गलत पासे नहीं जाणगे, परमात्मा दी भावना होवे हाथ गलत करनगे भी नहीं। भय के चरण कर भाव के, लोइण सुरत करे। अखां बना ज्ञान दियां, समझ दियां, सुरत दे ते अर्थ समझ, समझ दियां अखां बना। लोइण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा, इस तरह मिलावा। इकबाल कहिंदे ने दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इलम में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। ठीक है ज्ञान बार दा अक्षय ज्ञान, उहदे च भी कोई गल होवेगी पर रस तो ही नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान ते अनुभव ही होता है जो अंदरों जन्मे ते अंदर दी दुनिया नू बदल दे। अनुभव प्रकाश, लोइण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा। जितने चिर तक समझ दी अखां नहीं ने, गुस्ताखी माफ नेत्र ही ने, भावना नहीं है ये टुंडा, पै नहीं है ये लंगड़ा है। अमृत वेले उठ के जपदा नहीं है, इत गूंगा इत गूंगा। परमात्मा दी बाणी गुरु दे बोल सुन लगे अंदर उत्साह नहीं पैदा होता है, तो बह रहा है एक ते सुनता है ते बह रहा है। महाराज कहते ने रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे दाए। पहला पातशाह वाक सतगुरु नानक देव जी महाराज का वाक रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे दाए। जो लंगड़ा है टुंडा है अंधा है बहरा है गुंगा है इनू परमात्मा कितों नसे। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन नहीं है, बच्चे कुल अंग नहीं है, हाथ है कुछ नहीं कर सकता, जबान है नहीं बोल सकता, सहजे सहजे इसनों भोजन मिलता है, दूध मिलता है, खुराक मिलती है, एक दिन इसके हाथों ताकत आँगी कुछ करन लगता है, एक दिन इसके पैरों च बल आ जाता है चलन लग पैंदा है, एक दिन कुवत गोयाई मिल जाती है बोलन लग पैंदा है। शरीर दे ये सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे काम करन लग पैंदे ने भोजन की शक्ति नाल, विकास सारा भोजन ते खड़ा है। रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के, हर अमृत वेले वत्ते का भेजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना, वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया जपदिया एक दिन वाहेगुरु दिखाई देन लग पैंदा है, एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देन लग पैंदा है, एक दिन उसका दामन हत्थां दे आ जाता है, एक दिन ऐसा महसूस होता सी कि परमात्मा की गोद च बैठ रहा। ये सारी तौफीक मिल रही है भजन नाल, जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन, भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा, मनुख का शरीर मर जाएगा, पर भजन रोज रोज ना हो अखा नहीं मिलनगियां जो परमात्मा वेख सकते, वो कन भी नहीं मिलनगे जो सुन सकते, वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भजन का रस माण सकती है। यह भी मैं अर्ज कर रहा, भोजन की बुरकी मूंह ते रख रहे हैं स्वाद आ गया, वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया रस नहीं आया, क्यों अजे जबान विचों तौफीक नहीं है, वरना वाहेगुरु आखण का भी अपना रस है, जिन्हों वाहेगुरु आखदे रस आवे साहब कहने परमात्मा की रसना ते वसे है। प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना, वाहेगुरु तो यदि जबान ते क्यों ये वाहेगुरु आखद रस नाल वर जाता है, ये बाणी जपद रस नाल वर जाता है, बाणी तो यदि रसना ते वस गए, नाम तो इसकी रसना ते वस गया। जिन्ने चिर तक वाहेगुरु वाहेगुरु आखद रस ना आवे अजे वाहेगुरु रसना ते नहीं वसया, जितने चिर तक रसना ते नहीं वसया अखा नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा, परमात्मा ने दिखाई देगा संसार दिखाई देगा, कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा। पहले गल रस दी, भोजन पहले जवान का रस बनता है, खून बाद विच बनता है, मांस बाद विच बनता है, हड्डियां की ताकत बाद विच बनता है, इंद्रियां की शक्ति बाद विच बनता है, रस पहले भोजन की बुरकी का रस आ गया स्वाद से पहले आ गया, हुण सहजे सहजे ये बुरकी पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी। वाहेगुरु आखते हैं जब रस आ जाए तो समझ लेना वाहेगुरु रसना ते दिवस गए, अजे रूहानी शक्ति नहीं है, अजे अखां विच भी तौफीक नहीं है कि प्रभु नूं देख सकन, अजे ये सिलसिला विकसित होवेगा। पर इतनी गलती स्पष्ट हो गई जबान ते, ये पहला कदम है। बाणी पढ़ रहे हैं कोई रस नहीं है, वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हैं कोई रस नहीं है, अजे रसना ते भी नहीं वसा, अजे हनूस दिल्ली दो रस्त रूहानी बल रूहानी शक्ति, अजे वेखना उस प्रभु नु सुनना समझना अनुभव प्रकाश वो ते लंबी गल है, अजे ते आखदे आ रस भी नहीं है। प्रभ जी वसे साध की रसना, जैसे रस आन लग पैंदा है रसना ते प्रभु वस जांदा है, ते रसना विच बरकतां आ जांदियां, बोलां विच बरकतां आ जांदियां, एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां, जपदियां जपदियां एक दिन कदमां विच क्रांति आ जांदी है, ये सब कुछ जपदियां जपदियां होंदा है। महाराज कहिंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकत, जे ओ कंचन नो हथ लावे खेउ सेती रल गया, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਡੈਡੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਬਰਕਤ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾਂ ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫੁੱਲ ਛੁਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
1: ਫਤਿਹ। ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ, ਫਰਨਡੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
2: ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪ ਟਿਕਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤੀਬਰ ਤਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਨਵ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਦ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ। ਹਵਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂਗ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਮਰਨ, हे मालक तेरी बंदगी दी तांग ही मेनू इस जिसम विच इस चोले विच लैके आई। हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा ता मैं ए वजूद हासिल कीता ता शरीर धारण कीता तेरी बंदगी कर सका वगर ने जोके जोके दा अर्थ शौक। बाकी मेनू कोई शौक नहीं इस तन विच रहन दा सिर्फ एक शौक के देगी मिली मैं तेरी बंदगी कर सका। हवाए बंदगी अवुर्द दर वजूद मरा वगर ने जोके चुनी आमदन नाबूद मरा। होर कोई मकसद नहीं। हजूर ने इथे फिर जदो जग्यासु दे प्रश्न सवाल संपन्न हुए ते अगो उत्तर शुरू कीता है। ओ उत्तर उत्तर जो दिता गया गुर सिख वालों ओ पहला उत्तर पहला ए सी के अपने आप नू समर्पित कर दे अपनी खौमे नू छड़ दे। जे गुरु सज्जन नू मिलने परमार्थ दे पंध ते चलने परमार्थ दी पगडंडी ते तुरने ते सब तो पहली गल ए धारण कर इत मार्ग चले भाई अड़े। ओ भरावा मेरे वीरा जे इस मार्ग ते एक रस्ते ते चलना चाहने ते पहला काम ए कर गुर कहे सो कार कमाए जियो। कार दा अर्थ है काम। जो गुरु कहन जो सतगुरु अपनी रसना तो कहन बिना तर्क दे बिना खुजत दे बिना किसे कटाक्ष दे तू सत बचन करके मान ले पहला तेरे लिए उत्तर ए पहला सबक ए वे कि जिसनु मथा टेक दिता है उस गुरु दे कीते ते तर्क ना कर जो कहिंदा उनु सत बचन करके मनी गया। आओ ए बचन है कि गुर कहे सो कार कमाए जियो। क्योंकि गुरमत दे अंदर सतगुरु दे घर अंदर जदो आपा गुरु वाले बन जाइए सतगुरु नु आपा समर्पित करन दा अर्थ के अपनी खौमे नु अपनी मैं नु अपनी खंगता नु मिटा देना। जो मेनू अज समझ नहीं पै रहा उस ते तर्क मत करा। एक गल चेते रखा कि मेरी अकल मेरी बुद्धि मेरी सियाणप दी सीमा है। सतगुरु आगाद बोध ने अज समझ नहीं पै रही ए मेरी अल भगता है। कल नु सतगुरु कृपा करन आपे ही जना देन एदा मतलब ए नहीं कि जो समझ नहीं पैंदा पिया ओदू खंडन करके कह दिता जाए कि इस चीज नु ता मैं मनदा ही नहीं। एक है खूह दे डड्डू वाली बिरती कि सिर्फ खूह दे दायरे नु समझ लेना कि इस तो अगे पानी ज्यादा नहीं खो सकता समुंदर होना ता झूठ है। जिवें खूह दा डड्डू खूह दे पानी नु ही सीमा मनी बैठे मना तू अपनी अकल नु सीमा मत मन के उस सतगुरु दे जो बचन कह ओनु सत बचन करके जिंदगी च कमा ले। आओ थोड़ा जा बाणी विचो असी प्रमाण लईए। हजूर दा एक बचन कह फरमाया सतगुरु जी ने कहन लगे तिन का जन्म सफल है ओना गुरमुखां दी जिंदगी फल सहित है। जो चाले सतगुरु पाए पाए दा अर्थ पाणा ओदी रजा ओदी आग्या विच ओना दी जिंदगी सफल है। जो चाले सतगुरु पाए कुल उधारे अपना ओ अपनी कुल दा भी भला पै करदे ने ओदा पार उतारा कर रहे ने। कहन लगे तिन धन जिणेंदी माए ओना दी माता भी धनता जोग जेड़े गुरु दे सामने झुक के गुरु दे हुक्म नू मन गए। सतगुरु दा एक दो बचन खोह फिर असी देखांगे कार कमाण वाला गुरसिख ओ अपना आप समर्पित कर देंदा है। सतगुरु दे दो पवित्र बचना विचों के देखो बाणी पढ़ना ए मालक दी कृपा है नाम जपना ए भी मालक दी बख्शीश है कीर्तन करना ए भी ओदी कृपा है। पर जदो आपा बाणी पढ़ने आ कीर्तन करने आ कथा करने आ विचार करने आ पर एक गल अखीर विच कही जांदी है कि मालक इस गाए नूं इस सुने नूं इस पढ़े नूं इस विचारे कोई नूं आप जी अपने घर विच थाए पा लवो। इहदा मतलब प्रवान कर लवो जो असीं कर्म कीता है वह प्रवान करो। महाराज कहिंदे ने गाउणा बहुत अच्छा बाणी पढ़नी बहुत चंगी पर एक गल याद रखी, जो कुछ गाया गया है, जो कुछ पढ़िया गया है, जदों तू

ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ ਕਿ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀਆ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਦਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਲਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੁਰਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਇੰਡ ਫੇਥ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਲਾਇੰਡ ਫੇਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਇੰਡ ਫੇਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ, ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਧਕ ਤਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੀਖਣ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਣਪ ਕਹਿ ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਹੁਜ਼ਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬੰਜਾ ਖੁਜਤ ਕਰਦਾ ਖੁਜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੈ ਓਨੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਟੋਰਾ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਡਿੱਗਾ, 6-7 ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਕਟੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਟੋਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਚੂਹੀ ਮਰੀ ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਸੱਟੋ, ਸੱਤ ਬਚਨ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਲੈਣਿਆ ਪੁਰਖਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾ, ਸੱਤ ਬਚਨ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਬਚਨ। ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਘੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਘੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਬਚਨ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਪਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤਰਕ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੱਤ ਬਚਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੁਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਗੰਮੀ ਲਹਿਰ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਿਰ ਵੇਖੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਭਰੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ,
गुरु ता वर्धा नगर कीर्तन च आम इकट्ठ होवे, एक जलसा किसे ने करना होवे ते सिर्फ एक दिन ली 2000, 5000, 10000, 50000 बंदा लाओ, उन्हें इकट्ठा होना होवे, कितना प्रबंध किया जाता है। कोई फायर ब्रिगेड दे संबंध बना लिया है, कोई डॉक्टरां दी टीम बना रहा है, किते एम्बुलेंस आईया ने, लखा प्राणी रोज मत्था टेकते ने, क्षमा करो, हालांकि सेवादार भी इधर उधर टोल टहल देने में किसी ते तर्क नहीं करता, शायद इनी जिम्मेवारी परिक्रमा च खलोते हुए अंपलाई भी नहीं देंदे, वो केड़ी शक्ति कहे कि लखा रोज मत्था टेकते, ना फर्स्ट एड ना एम्बुलेंस ना कोई फायर ब्रिगेड है, उथे गुरु रामदास जी की अगमी खेड़ वरदी है। इन थोड़ा जा बरीकी ना आप देखी, कौन है उथे जो सब कुछ कर रहा है, वो सतगुरु गुरु रामदास जी। मैं उन्हें संबंधी जरूर अज अर्ज करनी सी, जो गुरु कहिंदा है फिर उन सत बचन कर तर्क क्यों, जदो मथे ही टेक दिता। हजूर सच्चे पातशाह दा दरबार है, भाई वीर सिंह उन्हां ने एक बचन लिखिया सी, कहिंदे ने मां दा पुत्तर चला जाए, गवाच जाए, गुम हो जाए, उहदे लई जिंदगी जीनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सप दी मणी गवाच जाए, उहदे लई जीना बड़ा मुश्किल है। मां दा पुत्तर, सप दी मणी, कहिंदे ने बंदगी करन वाले दे अंदर दा रस गवाच जाए, उहदे लई भी जीना बड़ा मुश्किल है। सच इह जे कि बाहर दा नशा किसे नूं हो जाए, उहदी तोट आवे ते चल फिर सकदा है, जदों अंदर दी किसे नूं तोट पैंदी, कदी उहनूं पुछ के देखे उहदे ते की बीतदी है। ज्यो मछली बिन पाणी है क्यों जीवन पावे, बूंद विखूणा चात्री को क्यों कर तृप्तावे, किवें टिका मिले। पर उह कहिंदे ने कि जिस बंदे दा रस टुट जाए, जिस दा नेम टुट जाए, जेड़ा जिंदगी च किते थिड़कदा दिसे, तन गुरु रामदास एक वारी तेरी दहलीज ते तेरी सरदल ते आके मत्था टेके, सच एवे उथे बेरुखिया नूं रस मिल जांदा है, टुटिया नूं सुरत लभ जांदी है, खुवार खोया नूं तेरे घर दे विचों राह लभ जांदा है। उन्होंने 17 पंजाबी च लिखिया, दरबार साहब ते उन्होंने लिखिया, कहन लगे मणि गवाचिया सप ज्यों दुख पामदा, पुत गवाचिया मां जग नहीं भामदा। मणि गवाचिया सप ज्यों दुख पामदा, पुत गवाचिया मां जग नहीं भामदा, हर रस दी जद तोट पवे फकीर नूं, परलो मचे चुफेर त्यों कबरामदा। टुटी डोर जे द्वार तेरे ते आमदा, तन गुरु रामदास टुटी डोर जिदा अंदर टुट गया बेरसा हो गया, टुटी डोर जे द्वार तेरे ते आमदा, लहर फिरे एक वार रो ओ तामदा, की अगमी खेड एथे वर्तदी, अर्श उतरिया आन रसियां बचांदा। की अचरज खेड है उस धन गुरु रामदास जी दे जीवन विचों ही ना, एक छोटी जी घटना जो इतिहासकारा ने लिखी, बस ओ समझन लई के इत मार्ग चले भाइयड़े, गुर कहे सोकार कमाए जियो। गोइंदवाल साहब दी धरती है, हजूर ने दोनों दामाद भाई रामा जी ते धन गुरु रामदास जी, जिन्हां नूं भाई जेठा जी भी कहा जांदा है, कुछ कु ग्रंथां विच जेठा जी दा जिक्र है शब्द दा, कहिंदे ने थड़े बनाने लई क्या, आप सारे जानदे हो, निशानदेही दे दित्ती गई, लकीर खिच दित्ती छोटी नाल धन गुरु अमरदास जी ने कि इस ढंग नाल इन्नी उचाई च बनानी। शाम आए, दोनों दे थड़े ढा दिते, ढवा दिते, ते नाल कहा जो सवेरे दस्या तुसी भुल गए, साड़ी मत मुताबक थड़े नहीं बने, कल सुबह फिर आयो। आए थड़े ढा बनाने दी आग्या दिती, शाम नूं फिर ढवा दिते, तीसरे दिन फिर थड़े बने। तीसरे दिन आए, कहन लगे क्यों नहीं समझ पैंदी पई, जिवें असी कह रहे हां उवें थड़े क्यों नहीं बन रहे, ढा दिओ। गुरु रामदास जी ने ढा दिता। भाई रामा जी ने कहा महाराज मैं नहीं ढाणा। सतगुरु ने कहा क्यों, कहन लगे तीसरा दिन कह थड़े बनांदे आं, जिवें आप जी कहिंदे हो मैं रोज उसे तरह ही बनांदा खां। महाराज जी ने कहा नहीं, साडी मर्जी मुताबक नहीं,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਪ ਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਏ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤ ਦਿਨ ਥੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਥੜੇ ਟੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੜਾ ਬਣਦਾ, ਢਾਹ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢਾਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਬਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸੁਬਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਉ ਅਜਾਨ ਨਿਤ ਭੁੱਲਣ ਖਾਰੋ, ਮੈਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੁੱਲਦਾ ਵਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਉ ਅਜਾਨ ਨਿਤ ਭੁੱਲਣ ਖਾਰੋ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰੋ, ਬਿਰਦਾ ਅਰਤੇ ਸੁਭਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ। ਖਾਉ ਅਜ਼ਾਨ ਨਿਤ ਭੁੱਲਣ ਖਾਰੋ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਤ ਕੋ ਮੋਹੀ। ਦੇਖੋ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਲੈ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਆਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਅਗਲੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ਤ ਹੋ ਮੋਹੀ, ਅਗਲੇ ਤੁਕ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੂਰਖ ਕੋਹੀ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਮੂਰਖ ਕੋਹੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਿਤਨੀ ਸਮਤ ਦੇਸੋ ਜਾਨਵ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਓਨੀ ਕੁ ਜਾਣੀ, ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਸਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨ ਦੀਏ ਕਿਆ ਬਪਰਾ ਮਾਨਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਦੋ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੈਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਪਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ। ਉਸ ਅਮੀਰ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਖੜਾਕ ਆਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆ ਸੋਟਾ ਲੱਕੜ ਚੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਅਮੀਰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ,
कि डंडा तेरे अधीन है, ये मन गए पर मैं ता अजे अधीन नहीं। महाराज जी दे फिर शब्द वल जिथों प्रमाण सी शुरू कीता, फुरमान तेरा सिर है ऊपर, तेरा हुक्म सत बचन। फिर ना करत विचार, ए नहीं कहांगा दोबारा सोचो, तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्तार। अगला बचन है सत बचन कर, रोसे गिले ना कर, बंदे बंदगी इख्तियार। ए इंसान तू बंदगी नु तारन कर, सिमरन नु तारन कर, क्योंकि बंदगी है ते जिंदगी है, अगर बंदगी नहीं तो जिंदगी नहीं गंदगी है, बंदगी ही जिंदगी है। भाई साहब नंद लाल जी ने ते कहा कि घर बुजुर्गी बाय दत्त कुन बंदगी, वरना आखिर मेकशी सरमंदगी। जे तू बहुत उच्चा उठना चाहे ते बंदगी कर, जे बंदगी ना कीती ते अखीर शर्मिंदगी पले पै, शर्मसार होवेगा। इन बाबा साहब ने कहा कि फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण, ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी, वकी साई दे दरबार। गर बुजुर्गी बाय दत्त कुन बंदगी, वरना आखिर मेकशी शर्मंदगी। शर्म कुन हां शर्म कुन हां शर्म कुन। देखो मन की साधना करने वाले कह लगे मना शर्म कर, कुछ लज्जिया कर कुछ। तीन बारी क्या इना समा हो गया तेनू गुरु कुल आया, कुछ लज्जिया करो मना कुछ समझ। शर्म कुन हां शर्म कुन हां शर्म कुन, ई दिले चू संघ संघ दा अर्थ हुंदा पत्थर। तेरा पत्थर बनिया मन क्यों नहीं समझदा पिया, ई दिले रा ई दिले चू संघ संघ खुदरा नरम कर। इनू बंदगी विच ला के ते पत्थर नरम हो जाए। साहिब कहिंदे बंदे बंदगी इक त्यार, साहिब रोस धरो के प्यार। ए बचन बड़े गहरे ने, साहिब रोस धरो के प्यार। साहिब दा अर्थ मालक, रोस दा अर्थ आपां सारे समझने जिहदे तो रुस जाइए, प्यार दा अर्थ स्नेह। के साहिब रोस धरो के प्यार, तू बंदगी कर, तू जो गुरु कहिंदे ने ओनू सत बचन करके मन। भावे मालक गुस्से होवे ते भावे तेनू प्यार करे, तू दोनों अवस्थावां विच ही खत जोड़ी रखने। हुण जिहड़ा रोस शब्द है ना, शायद दास ने इत्थे अर्ज नहीं कीती, रोस आ रोसानी दुनियादारां वाला चेते रखियो, रोस विच भी एक प्यार दी तंद जुड़ी रहिंदी। इह हुंदा ही नहीं कि जिथे रोसा होवे उत्थे संबंध टुट जांदे, नहीं। रोसे वाली थां ते कई वारी प्यार बहुत झलकन लग पैंदा है। रोस धरो के प्यार, किसे नाल अपना मन मिटाव होवे, किसे नाल कोई रोसा होवे, ते जदो ओहदे कोलो कोई आदमी चल के आवे ते आपां उचेचे तौर ते पुछने आ कि मेरे बारे कोई गल ते नहीं सी करता। इहदा मतलब मूंह नाल नहीं बोलदा पर मन करके ओहदे नाल जुड़िया होया है। जे जुड़िया ते तां ही पुछदा है ना कि मेरे बारे कोई गल तां नहीं सी करदा, ते जदो किते गल चले बदो बदी ओहदा जिक्र जरूर कर देगा। भावे ओह मूंह करके ओहदे नाल बोलदा नहीं पर अंदरों ओहदे नाल संबंध जुड़िया है। कह लगे मालक तू रुस भी जाए तां भी कोई नहीं, क्योंकि तेरे रोसे विच भी सानू प्यार ही मिलना, कि रोसे विच भी प्यार है। बंदे बंदगी इक त्यार, साहिब रोस धरो के प्यार। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार। नार ते फूल दो शब्द ने, कहने तेरा नाम ता मेरे लिए इस तरह है जिवें कमल दे फूल वास्ते पानी है। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार। भावे फरीद कोटिए टीका कर दिया ए भी लिखिया, ज्यो फूल जई है नार, जिवें इस्त्री बच्चे नू जन्म दे के प्रसन्न हुंदी है। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यो फूल जई है नार। अगे की है, कहो कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। तेरे गुलाम खां, तेरी मर्जी रख लै, तेरी मर्जी तू मार लै गुरमुखो। तन गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे जदो सतगुरु दे मार्ग ते चलना, तू इन्ने सवाल कीते ने मन टिक जाए, गुरु सज्जन मिल जाए, मेरे अंदर किते बख्शिश हो जाए, मैं इस जन्म विच कुछ कर सकां। कहन लगे पहला लैसन एवे जो गुरु कहिंदा उन्हूं सत करके मन, जो सतगुरु कहिंदे उस कार नूं मन।
देखो फिर बाणी च जदों बंदा वाद विवाद विच पैंदा मालक दे सामने उदो दिन ब दिन उदा अंदर घटी जांदा है। सच ए वे जेड़ा शरदा विच सुख है ना भावना विच सुख है वह दलीलों विच ते बोधक तल ते चौकियां सियाणपां विच नखी। कई बारी चलाक चुस्त ते सियाणप वह बेरुखी हो जाती है ते भावना उथे पहुंच जाती है जिथे सियाणप नहीं पहुंचती। सतगुरु ने आसा की वार विच दो बचन एक शलोक ते एक पौड़ी। शलोक धन गुरु अंगद साहब जी का ते पौड़ी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी। उहदे विच देखो हुक्म नूं मन्नण दी गल कीती गल भावें चाकर दी कीती तुहानूं सारिआं नूं तुसीं बाणी पढ़न वाले को कहन लगे जे नौकर बणिआ है ना ते जिहदी नौकरी करना है ना उहदे सामने कदी झगड़ा ना करी। नौकर ते विवाद इकट्ठे नहीं। जे नौकर है ते संत बचन करके चित ला के नौकरी कर ते जे तू मालक दे सामने विवाद करन लग पियो हो सकदा है कि जेड़ा मालक अज तेनू प्यार करदा कल नू विवाद तो बाद अपने घरों भी बाहर कढ़ दे। चाकर लगे चाकरी नाले गारब वाद नाले ता कह दिता सतगुरु असी तेरे सेवक हां जी असी तेनू मानने हां जी। जिवें अजकल चलदा पिया ना कि सतगुरु दे अमृत दी दात लई कलगी वाले दी बाणी पढ़ के अमृत मिलिया इस अमृत नाल कलगी वाले दे घर च जन्म होया माता साहब कौर दी गोद मिली श्री साहब भी पाई खै ते नाल कहिंदे ने चलो बाहर तां नहीं कहिंदे अंदर खाते कहिंदे ने सच्ची जे असी मानदे जरूर पए पर बाणी कोई नहीं जे। इहदा मतलब चाकर भी ते विवाद भी खसम दा दर मिलेगा। चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद गल्लां करे कनेरियां जिन्नियां मर्जी सियाणपां करी जा खसम ना पाए साध पढ़ना साध ही है पर एक शब्द है फारसी विच शाद शादी खुशी साध दा अर्थ खुशी। जिन्नियां मर्जी गल्लां करी जाई पर गल्लां ना रिझना नहीं मालक दी खुशी नहीं मिलनी। चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे इत मार्ग चले पाईड़े आप गवाए सेवा करे ता किच पाए मान नानक जिसनू लगा तिस मिले जिसनू लगा। ए फिर बेनती समझ के जिस दी रोज सिमरन करदा जिदे नाल रोज जुड़िया है कहन लगे लगा है ना ते लगा लगा एक दिन उहदे विच मिल जाएगा। पहला जुड़िया है नानक जिसनू लगा तिस मिले उहदे विच मिल जाएगा पर लगा नहीं छड़ी ना। भाई साहब लिखते सन के लगा रहे ते लगा रहो हर दम लगा रहे जे तुरिया ते छड़ नाने लगा रहे ते लगा रहो हर दम कदे ना छोड़ लगा रहे ते लख दा हटे ता कौडी मोड़। लगा रहा ते कीमत लखां दी पै जाएगी जितन छड़ बैठो ना तेरी कौडी कीमत नहीं पैनी तेनू ढेले सेर नहीं किसे पुछना। साहब कहिंदे चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद अहंकार ते विवाद गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साध आप गवाए छड़ दे अपनी खौमे नूं इत मार्ग चले पाई अड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो आप गवाए सेवा करे तां किच पाए मान नानक जिस नूं लगा तिस मिले लगा सो प्रवान ओ कबूल हो गया जिहड़ा लगा होया इक दिन मिल गया। यह शलोक धन गुरु अंगद साहब जी का है पौड़ी आदि गुरु जी की है। ओही बचन ने चाकर लगे चाकरी जे चले खसम है पाए गुर कहे सो कार कमाए जी खसम दे पाए ओदे हुक्म च चल। साहब कह रहे ने चाकर लगे चाकरी जे चले खसम है पाए हुरमत तिसनू अगली अगली दर ते बहुत ज्यादा जिनी तेरी तनखा है ना जिनी तेरी दिहाड़ी बनती है जे किते तू सत बचनी बनिया रहेगा हुक्म नू स्वीकारी जाएगा जिनी तेरी मेहनताना है जिनी तेरी रोज दी कमाई है मेरा मालक जेड़ा हुक्म सत करके मंद है ओनू ओदी मेहनत नालों दूनी बख्शिश कर देंदा।
जो तू कमाई कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तेरी कमाई तो दो गुणा बख्शिश वध होगी जद तू सत बचन कह दे। चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए, हुरमत तिसनू अगली ओ वजो पे दूना खाए। फिर महाराज किन्ने, फिर खसमे करे बराबरी, खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। वजो गवाए अगला जदो बराबरी कर ली, मालक दे बराबर बह गया। सच एवे मालक बन के कोई स्वाद नहीं जिन्ना दास बन के स्वाद है। दास नूं तां बख्शे ही हर वेले मिलनियां। साहिब कहिंदे खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए, वजो गवाए अगला मुहे मुंह पाणा खाए। कहिंदे ओह तां ठोकरां जुत्तियां खांदा जिहड़ा मालक दे सामने बोलन लग पैंदा। पहली गल कही तू पुछन लगा है, जो गुरु कहिंदे ने उस कार नूं कमा, फिर उस कमार नूं मजबूरी नहीं, ओनू अपने खिरदे तों सत बचन करके। देखो धन गुरु नानक साहब दा पवित्र शब्द है, यह सत बचनी कार है ना, कि मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नौ सुभागा, कुरकी बचनी खाट बिकाना, जित लाया तित लागा। जिथे ला दिता बस सत बचन, जित लाया तित लागे, तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई, मां लाली प्यो लाला मेरा खो लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करूं तेरी राया। पिए ता पानी आनी मीरा, मालक जी प्यास लगे पानी लेके आवा, खाए ता पीसन जाऊं, भुख लगे ते गुलाम नु हुक्म करो चक्की ते दाने पी के आटा ताजा लेके आवा। पिए ता पानी आनी मीरा, खाए ता पीसन जाऊं, पखा फेरी पैर बलोवा, जपत रहा तेरा नाम। हुक्मी बंदे ने ना कि मालक पखा चला तेरे चरना नू पलोसा ते नाल नाम जपा, इनी कमाई करके हुक्म मन के, इन्हें क्या असी हुक्म मने। अखीर ते कहन लगे मालक जी लून हरामी नानक लाला, तेरे घर का लून खा के हराम कीता है। एक है सिखी मालक नू समर्पित होण दी, लून हरामी नानक लाला बख्शे तुद वड्याई, तेनू पाए तू बख्श दे, मैं तेरे घर का नमक खा के हराम करना पिया। धन गुरु हरगोबिंद साहब दे वेले ना एक बचन है, वैसे ये दबस्ताने मजहब ओदे विच लिखिया है, कहिंदे महाराज जी ने ना एक सिख नू हुक्म कीता, कहन लगे सिखा नू कहो देखो किन्नी बरीकी च लतीफ अकल नाल गुरु दा हुक्म सुनदे। सिखा नू कहो कि जंगल विचो लकड़ा लेके आउण, उह सिद्धा जी तुरिया, किसे नू नहीं किया, चुप करके जंगल च गए, सुकियां लकड़ा कटनियां पंडा बनन लग पे, पंडा लियाई जान, रोजाना सेवा करी जान। एक दिन सतगुरु ने पूछया कि वह सिख नजर नहीं आता कई दिन का, कह लगे महाराज वह तो दिन रात लकड़ी ढोई जाता जंगल चो। हजूर चले गए जाके कहन लगे सिखा तेनू ए हुक्म कीता सी, सिखा नू कहो के लकड़ा टोन। कहन लगे मालक जी मैं भी सिख हां, मैं कहन तो पहला खुद हुक्म मनना चाहता सा, सिखा नू कहा पर पहला मैं ता मन्ना, सिखा नू कहा लकड़ा टोन, पहला मैं ढो के जा सिखा। एक है सत बचन के जो सतगुरु ने कह दिता उस गल उते पहरा दे देना। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन ने कि जदों सेवक अपने मालक दा हुक्म मानदा ते फिर हुक्म विच खुजत नहीं। कबीर साहिब दी पवित्र बचन है, उन्होंने तो इतों तक शब्द वरते है कि हे मालक असी तेरे दर दे उत्ते मानव देही लेके आए हैं, पर हुक्म इस तरह मानन आए हैं कि जिवें कुत्ते दे गल विच पई कोई संगली मालक दे पिछे पिछे तोरी जांदी है, असी हुक्मी बन के तेरे दर दे कूकर खां ते जिधर हुक्म दी जंजीर खिचेगा सत बचन करके पिछे तुरा। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले खमारे जेवरी जे खिंचे तै जाऊं, जिधर तुसी खिचोगे मैं उधर तुर पवांगा। भाई नंद लाल साहब जी उन्हां तां लिखिया है कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी तेरे दर दे कूकर खां,
लाल सख ए गुलाम गुरु गोबिंद सिंह। लाल दा अर्थ भाई नंद लाल, सख दा अर्थ फारसी च कुत्ता के नंद लाल। देखो सी शब्द मैं कथा लई वरत रहा वा, कई बारी जबान थिड़क दिए एहो जे शब्द कहिंदे हां कि एडी करनी कमाणी वाले के असी ता मैं ता तेरे दर दा कुत्ता हां। ते कह लगे इनी खुशकिस्मती है कि मैं वह कुत्ता नहीं कि जिदा मालक कोई नहीं, हुक्मी बंदा हां। तेरे दर दा कूकर खां, मेरे मस्तक ते तेरा निशान प्यार है, मेरे मस्तक ते तेरी निशानी पई है। पर नाल कह लगे नहीं, मैं कह बैठा वा कि तेरे दर दा कुत्ता वा, दर असल मैं ता तेरे कूकरां तो भी नीवा खां। मैनू इनी खुशकिस्मती है वे कि तेरे दर दे डिगे कोई रोटियां दे भोरे चुन चुन के खाना पिया। किड्डा वड्डा आपा समर्पित है। लाल सख ए गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दाग दारे नाम गुरु गोबिंद सिंह, कमंत्रीन के सैगान गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह। मालक मैं ता तेरे दर दे कूकरां दे कोल जिहड़ियां रोटी दे टुकड़े ने उहनां नूं चुन वाला। सतगुरु ने बचन किया उत्तर देंदे हां कि जे इस मार्ग ते चलना है, क्योंकि गुरसिखी एक मार्ग है, एक गाड़ी राह है। ते गाड़ी राह दा अर्थ है जिथर गैल पई है तू उधर तुर, राह नूं पाड़ ना। गाड़ी राह समझदे गैल आपां ना। एक वारी जदों गड्डा लंघ जांदा सी पहला लंघना बड़ा मुश्किल, एक वारी राह बन जाए तू उस राह विचों लंघ, ते जेड़े राह पाड़दे सन बलद उहनां नूं दुख मिलदा सी, बड़े मुश्किल सी। जो गुरु ने राह दस्या है, एक पंथ एक मार्ग दस्या है, तू क्यों बेकुदरा होके आप उदरा होके इस पंथ विचों पाड़ पा पा के बाहर निकलने। जे सिख कहानी तां पहला उस पंथ ते चल जो गुरु ने बनाया। सतगुरु ने पंथ ही साजिया जिहदी गल आपां कल करन जा रहे। तन गुरु कलगी वाले ने सिरजिया शब्द सी वरतने, पर भाई गुरदास साहिब कहिंदे ने जिहड़ा खालसा पंथ है ना, ये ओही पंथ है जिहड़ा बाबे नानक दा निर्मल पंथ है। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, महल तो रहत वो पंथ जिन्हों साहब ने मार्ग क्या है कि इस पंथ ते इत मार्ग चले पाई अड़े, इस रस्ते ते चलना। गुर कहे सो कार कमाए जियो, जो सतगुरु कहिंदे ने वो कार कमा। हुण गुरु जी की कहिंदे ने कार कमान, वो ता कहिंदे ने कि प्रथम रहत जे ज्ञान खंडे की पौछक है। साडा ए मार्ग है कि जो गुरु ने दित्ती है पौल उन्हूं सत बचन करके शक लै तू, उस पौल नूं शक। गुरु जी कहिंदे ने कि कार कमा, कार कमा दा अर्थ कि जो तेनू रहतां दसियां ने उन्हां नूं अपनी जिंदगी विच धारण कर लै, ते जिन्हां करैतां नूं तेरे नूं वजे वरजिया है उन्हां करैतां नूं अपने आप नूं बचा लै, ते फिर तू रहत रख दियां। तर्क कुतर्क च ना पै, जो गुरु कहिंदे नूं सत बचन करके मन लै, मनन विच तेरा पड़ा है। सतगुरु ने फरमाया कि जेड़े सत बचन करके मनदे ने उह खुजत नहीं करदे, उह तर्क नहीं करदे। इसे नूं साहिब ने कहा कि जैसी आग्या कीनी ठाकुर, तिस ते मुख नहीं मोहरियो। इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, जैसी आग्या कीनी ठाकुर, तिस ते मुख नहीं मोहरियो। सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर, उठ उवाहू को दौरियो, आग्या मैं भूख। ओदे हुक्म विच जे भूख मिली ओ भी सुख है, आग्या मैं भूख, सोई कर सोखा, सोग हरख नहीं जानियो, जो जो हुक्म पायो साहिब को सो माथे ले माने। जो दा हुक्म होया ओनू खिड़े मथे सत बचन करके स्वीकार कर लिया, ते जिन्ना ने हुक्मी बंदे बन के ओदे हुक्म नू सत बचन करके मनिया उन्हां नू मंजिल भी मिली, ओ मालक दे दर ते पहुंच भी गए। साहिब ने अज फुरमाया कि इस रस्ते ते चलना है, अपनी नहीं चलेगी, इत्थे गुरु दी चलेगी। ताही तां असीं कहने हां कि गुरु द्वारा। एक वारी दास अर्ज कीती सी कि गुरु दर है ते एक सो दर है, सो दर ते पहुंचना है ते गुरु दे दर विचों ही निकलना पएगा।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਪਾਈ ਅੜੇ, ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਉਂਦੇ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖੋਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੋਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਰਤਬਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਦਾਣਾ ਖਾਕ ਮੇ ਮਿਲਕਰ ਗੁਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਦਾਣਾ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜਦਾ, ਫਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮੇ ਮੈਂ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਢਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਜਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ, ਮਿੰਟ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ।

एक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सरमाने समस्ते नदाने नमो देव देवे भेखे भेवे नमो काल काले नमो सर पाले नमो सर्व गाउणे नमो सर भावणे अनंगी अनाथ नृसिंह परमात नमो पहन पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पहन पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूप प्रपंगी परमाते समस्ति विभूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूप नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जुगे स्वरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुरूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो सह सहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्तुल निवासी सदा से ददा बुद्ध दा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वरं परोक्ष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अच्छे दि भेदे नाम कम समस्तो पराजी समस्तस्तता तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है पीत है पे है प्रभु है जू है देस है भेस है भुजंग प्रयत छंद अगाध अबाध नंदी स्वरूप नमो सरमाने समस्ते नदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं पंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे आखे जय भेजे समस्तंग प्रसिजय कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चारपट शांत वह प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चाल पोगे चाल राज टाल साजे अखल धर्म लाख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पहने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग ज्योता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल शांत वह प्रसाद आद रूप नाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मंत्र मान देव भेव आदोदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप साल नाम ठावना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त जोन आद शेख देश और न पे जागर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विसाव फैलया न राग नाम का विहीन भेख ताम जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तथा हे एक मूर्त अनेक दर्शन की न रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक दे भेव न जानी जेह बेद और कतेब रूप रंग न जात पासु जानी केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिरा चत्र चक्र मानी पुर तीन लोक चौदह के बिख जग जापी जेह जाप आद देव नाद मूर्त था प्यो सब जेह थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचे स्वयं पव गड़न भंजन हार कालहीन कला संजूत अकाल पुरख देश धर्म तंस परम रहता भूत लख भेस अंग रागन रंग जाके जात पातन नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी कान उस्त तेग पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व त्यान पेख सर्व शास्त्र न जानी जेह रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत भक्त नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आविह वह चेत मद पार संत प्रसाद गुण गान उदार महिमा।

भंगत मित पर गुणगन उदार मुनगन प्रणव निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत खंड अलिस्या कर्म दृश्य धर्म सर्व प्रणाड अंडंड बाड चाचरी संत प्रसाद गोबिंद मुकंद उदारे पारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छांद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्म।

क राज करी मैं क कर्म करी मैं क सर्वं कली है क सर्वं दली है क सर्वत्र मान है क सर्वत्र दान है क सर्वत्र गावन है क सर्वत्र पावन है क सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मान है सदा प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पहन है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं काली मैं के परमं फही मैं के आकल आला मैं के साहेब कला मैं के उसनल वजू है तमाम रजू है हमें सलसला में सलीख तम दा में गनी मुल सकास्ता गरीब उल परास्ता बिलुंदल मकान जमीन उल जमान तमी जल तमाम रुजू अल नदान हरी भोला जी मैं रजाय के शकीन अनेक उल तरंग है भेद है भंग है अजी जुल नवाज गनी मुल खराज है निरुक्त स्वरूप तिर मुक्त बेभूत है भर भूत प्रभ है सुजुक्त सुदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त पराज है सदा सर्व सहज है सदा सर्व साज है समस्त उल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाद है अनूप है ओवंग आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध्य अगंज अगाध सुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानुराग है त्रिभूत स्वरूप है छेज है छूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वी उल प्रवास है निरुक्त प्रभ है सदैव सदा है बेभूत स्वरूप है परजूत अनूप है निरुक्त सदा है बेभूत प्रभ है अनुक्त

सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग योग्यता सर्वंग मोक्ता।

अपंगं विभूत परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोतरे न पुत्रे न

समस्तल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बेहस्तल नवास है के सर्बल गवान है हमेशल रवान है तमामल तमीज है समस्तल अजीज है परंग परमीस है समस्तल अदीस है देशल लेख है हमेशल अपेख है जिमिनोल जम हमी कोल इमह करीमोल कमाल है के ज्वरत अजमाल है के चलंग प्रकाश है के मित्तो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मित्तो विभूत है के मित्तो पसा है के आत्मंग प्रभा है क्या चलंग अन्नांग है क्या मित्तो भंग है मध भर संत है प्रसाद मोन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर पर भंज अनगन प्रणाम मोन मन सलाम हर नर अखंड बर नर मंड अन पवनास मोन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अन छे जांग आसन भंग उपमा पार गात्मित उदार जल थल मंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अन पवनास त्रित धर तो रासा जान बाहो एक ऐसा दाहो ओ अंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात अजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठाटा पार अन टुट भंडार अन ठाटा पार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरण अनंत दाता महंत अर बोल मना छंत है प्रसाद।

नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र नमो राज राज नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकार नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीज नमो राज संगताम संगसांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद्ध जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलहकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी तरकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद

नरेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासेन्द्र कामं विपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सोतर्मं विपूते सदा साचदानंद सतरंग प्रणासी करी मूल को निंदा समस्तोल निवासी अजायब विपूते गजायब गनी में हरियं करियं करीमल रहीम चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं पौषभंग सर्वदा सर्वजूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं

एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवें तवै प्रसाद सवैये सराभग सुध समूह सिधान के देख फिरयो कर जोग जती के सूर सुरार्दन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हू ते एक रति बिन एक एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर रूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भजान के भूप भली बेदन आवत शीस न जात बिचारे एते भय तो कह भय भूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदांग नगारे गुंजत गूड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गाना इन्हें जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख्या वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख्या पौन आहार जति जत तहर सब सो विचार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन।

निरंकार का चीनतन पेवा पाप निबोध जेती बरनद पहन पहन तुह तो तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप स्वरूपा रंक पहयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तजकीनी उत भुज खान बाहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हो बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाया चंग पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जित उठवत पाता सकल मलेच्छ करो रण काता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे पुरख जावन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट

और मोह सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बे सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जप है दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसै व्याप।

गहने पौन पानी में संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसण हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा।

तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया एक बचन पर समय अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़ क्यों मैं चल नहीं सकदा क्यों नहीं चल सकदे हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी करने का कर सकता एक कदम चलेगा दो कदम चलेगा तीसरे से डिगेगा लाजमी डिगेगा लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है बच्चे नु चलना आ गया प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा चलो एक कदम ही सही चलिया ते है एक कदम चल चलना एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है तू एक कदम चलते सही वाट लखां को दी है चिंता न कर कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटाया है तो गल स्पष्ट हो गई चलन दी जांच आ गई ये चल पे जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना मां नू चिंता हो जाती है पिता नू पीड़ा हो जाती है ले जांदे डॉक्टर कोलों हो गया तीन साल दा हो गया चार साल दा पैर नहीं पुटदा तीन चार वरिया दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया कहंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलदा है मम्मा अखर पहले निकलदा है मां मां ये पहला करण लग पैंदा है मां शुरुआत है और अखीर देच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा जे बच्चा रह गया है बुजुर्ग नहीं होया मां कहना आया है वाहेगुरु कहना नहीं आया जे मां निकले है अजे शरीर जो मां सी उसका ना ते निकल आया इदी जबान चो पावे मां ने नहीं आखिया मैं मां हां तेरी लेकिन निकले प्रकृति इसके मुंह कटवा दी है चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे पर्शियन होवे अरबियन होवे चाहे कोई हिंदी बोलता है सिंधी बोलता है पंजाबी बोलता है दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है मां मां मां और जे जिंदगी दा अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जीवन यात्रा सफल हो गई जगत ते आया सफल हो गया मां ते निकलिया और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां ये बच्चा बच्चा रह गया है अगे नहीं जा सकया तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने हे प्रभु मैंने बोलन दी जांच नहीं आई तेरे बोल मैं सुन सका
मेरे कोल कन भी कोई नहीं है, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका, मेरी जबान नू अजे बोलन दी जाच नहीं आई। तेरे रस्ते ते मैं चल सका, वो पैर में कितों लिया हैगे ने मनुख कोल पैर, क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चल देने, बाजार दे मार्ग ते चल देने, संसार दे मार्ग ते चल देने, कदी कदाई कोई कदम जो परमारथ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु कहंदे मेरे कोल ओ हथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन। हथ है न मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा। हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सका, अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। हुंदा ते है हत्थां दे च कोई ना कोई दामन, हर एक दे हत्थां च हुंदा है। किसी दे हत्थे च पदरां मना है, किसी दे हत्थे च पिता दा दामन है, उस दामन दे आसरे ते चल रहे। किसे दे हत्थे च भरावां दा दामन है, किसे दे हत्थे च पत्नी दा दामन है, पति दा दामन है, और किसे दे हत्थे च पड़ोसियां दा। कदी कदाई कोई कबीर जैसा, रविदास जैसा, रामानंद जैसा कह उठदा है, हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मे बोल, सबे साख कुड़ावे दिथे तो पल्ले तैदे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने, हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है। सफल हो गए हथ, तेरा पल्ला मेरे हथ च आ गया। महान हो गए ने हथ, तेरा दामन मेरे हथा च आ गया। ते जब तेरा दामन मेरे हथा च आ गया, उन जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च, ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नू अपने विच छुपाई बैठा है, जिस नू उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावां जिहड़े तैनूं वेख सकदे ने। इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्हां अखां विच परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां, किसे दी अखां विच धन है टपक रिहा लोभ, किसे दी अखां विच रूप है टपक रही है वासना, किसे दी अखां विच उसकी औलाद है टपक रही है ममता, ममता ही दसदी पई है अखां विच तियां पुत्र ने, वाशना ही दसदी पई है अखां विच रूप रंग है। क्रोध ही दस रहे है, ए लाल अखां ही दस रही ने, अखां विच कोई दुश्मन बैठ गया है और दुश्मन ने अखां लाल कर दितियां। अखां लाल नहीं होईयां, दुश्मन ने लाल कर दितियां, दुश्मन ने अपना रंग अधपक दित्ता। कदी कदाई ओ अखां जिन्हां विच परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठता है उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आंदे। वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे चों प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिसदे चों समदृष्टि झलकदी है, जिसदे चों दया डुल डुल के पैंदी है। उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्टि, अमृत दृष्टि। नहीं ते दृष्टि भी जहरीली आउंदी है, जिवें कईआं दे बोल जहरीले आउंदे ने, कईआं दी तकड़ी भी बड़ी जहरीली आउंदी है। कईआं दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईआं दी तकड़ी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकड़ी विच जहर भी है, तकड़ी विच अमृत भी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने,
भुजबल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेओ अंगुरिया सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। मेरे कोल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोलां नूं सुन सका। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज संसार दी आवाज किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने बहरे ने हर एक दे कन बह रहे ने आवाजा सुन रहे ने ऐसी गल नहीं है। समुचे परिवार की आवाज सुन सकते ने संसार की आवाज सुन सकते ने निरंकार दी ते कदी कदाई कोई कद पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं और। ए परिपूर्ण परमात्मा जितनी भी आवाजा मेरे कन्ना च पै रही पंछियां दियां पशुआं दियां मनुखां दियां बदलां दी गर्जन पवन दी शांशां मैनूं ते इंज लगदा है ए तू ही बोल रहे है। सब तेरी आवाज सब तेरा नाद सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे मेरे कोलो कन भी नहीं मेरे कोलो जबान भी नहीं मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे उसदे घर दे ची सिक्का चलदा है ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलता। इदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने बाहर दे नहीं इदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसदे बोल सारे महल सारे कलोनी चल जांदे ने मन लैंदी है समुची वसनीक उसके बचना उसके बोलों नू मन लेंदी है सुन दी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे भी पहुंचते हैं उत्थे भी सुने जाते हैं। कदी कदाई कोई लखां करोड़ां च इक कद खुशकिस्मत इंसान जिसके बोल निरंकार तक पहुंचते हैं और सुनदा है निरंकार उसके बोल परमात्मा नू भी सुनने पैंदे ने उसके बोल ईश्वर नू भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने वो जबान में कित्थों लेवां जिहड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके वो कन में कित्थों लेवां जिहड़े तेरे बोल सुन सके वो नेत्र में कित्थों लेवां जो तेनू वेख सकन और हत्थां दी ओ मैं पकड़ कित्थों लेवां जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कोल तो पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रेस दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रेस दे कोलों खो लईए फिर पत्थर ते मनुख दे च कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा पत्थर किसी पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा क्योंकि उहदे कोल हाथ पैर नहीं है। पत्थर नहीं बोल सकता पत्थर सुन नहीं सकता पत्थर वेख नहीं सकता पत्थर सुंग नहीं सकता पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता पत्थर सोच नहीं सकता। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च ए इंसान होवेगा गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा जिवे पत्थर जिमें एक पत्थर नू कोई बोध नहीं पत्थर दे च कोई गति नहीं पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनू ते एक गाथा याद आई एक सूफी संत हसन दी वो जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदा सी और पिठ कर लेंदा सी स्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते स्रोतिया ने बर्दाश्त किया चलो खैर सुन दे पाया चलो मुंह साड़ी तरफ नहीं करदा ते ना सही बोल साड़े तक पहुंचते ने। लेकिन एक दिन स्रोतिया ने बेनती की थी फकीर साईं ऐसा क्यों कर दे हो जब सानू सुनान वास्ते ही तलावत कर दे हो जब सानू सुनान वास्ते ही उपदेश आवाज दें दे हो फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो पिट साड़ी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया
ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਦਾਮਨ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਦੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਸਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਬੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਦੇਖੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਨਬੇ ਕੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਿਧ ਗੁਣ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਮੇ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਲਾਈਏ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮਹਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂ ਸੋਨਿਓ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਓ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਧਰ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਇਧਰ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਰਦ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਮਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਤੋ ਕਿਆ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਸਮਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया सियाणा सहमत हो गया तो इसनू सियाणा आखण दी लोड़ की मूड है और एक महान सियाणे नाल दार्शनिक नाल ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इसनू मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं सियाणा हो गया सूझवान हो गया तल सम हो गया बराबर हो गया। भाई साहब कहिंदे ने मन में गुरमत गुरमत में ना मन ने चल होए कैसे उन मन ले उलाइए जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी दे च परमात्मा है मेरी सोचनी दे च पदार्थ ने तेरी सोचनी दे च राम है मेरी सोचनी दे च काम है तेरी सोचनी दे च निरंकार है मेरी सोचनी दे च अहंकार है मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं तो रिश्ता किस तरह जुड़े है मैं नेड़े किस तरह आवा मन में गुरमत गुरमत में ना मन ने चल होए कैसे उन मन ले बुलाइए अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई सब कहने अंग अंग टूटे ने ना मेरे कुल हाथ ने ना मेरे कुल पैर ने ना मेरे कुल अखा ने ना मेरे कुल कन है ना मेरे कुल रसना है ना मेरे कुल सोचनी है। हे गुरु मैं तो पत्थर दा पत्थर बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने चलना आ गया हे प्रभु मैनू खुशी हुई है पर उच्च बड़ी है जो चलना आया जिसने आज ही चलना सीखा तो किन्ना चलेगा एक कदम गिरेगा लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने सतगुरु तू मेरा हाथ पकड़ तू मेरी उंगल पकड़ भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहिंदे ने इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बां पकड़ लेंदा है परमात्मा बां पकड़ लेंदा है गुरु और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है थोड़ी जिया तो यह महान झलक नू भी वेख सकेगा थोड़ी जिया झलक की अपने औगुण दिखाई देन लग पैने। एक झलक है पहला प्रकाश की है अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जाना बड़े तो बड़े बलवान मनुख सियाणे मनुख कदी उन्होंने अपने औगुण नहीं दिखाई देते और कदी उन्होंने अपनी कमजोरियां नु कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन कदी कोई गुनाहगार नहीं कहिंदा कि मैं गुनाहगार हां ना गुनाह दिखाई देंदे ने ना गुनाह नु ओमंदा। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए जितने चोर डकैत पेश होए किसी ने भी नहीं आख्या सी कतल कीता गुनाह कीता गुनाह कीते कबूल ही नहीं गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा और गुनाह किधरे रोज भी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है गुनाह गुनाह नहीं रह जाता पाप धंधा बन जाता है पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी क्योंकि ते किरत है ते धंधा है धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होंदा है पाप धंधा बन जाता है गुनाह धंधा बन जाता है दुनिया भर का अनर्थ धंधा बन जाता है तो फिर धंधा दिखाई देता है गुनाह नहीं दिखाई देता किरत दिखाई देती है पाप नहीं दिखाई देता। जब किरत ही दिखाई दे रही है सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे हैं

0: कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति विपाशक बन दिए, शक्ति की पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति की झलक पैंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी की झलक पैंदी है। जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती उनु प्रभु की शक्ति कित्थे? जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते उसनु परमात्मा का पुन प्रताप कित्थे? जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा वह चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा? कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जाता है जिसने अखां दा ऑपरेशन किया है, पट्टी खोली है मरीज दी, ते उन्हूं कहिंदे आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल। जैसे वो अखां खोलदा तो डॉक्टर पुछदा कुछ दिखाई देता? कहिंदा हां अंधेरा अंधेरा। डार्क रूम दे च आकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहिंदा अंधेरा। डॉक्टर कहिंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनू रोशनी भी दिखाई देवेगी। अंधे नू अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नू कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नू कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहिंदे ही है कि अंधे की दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे का भी बोध नहीं है, उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा। जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे? कहिंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, ते कहन लगे तुसी मैनू बहुत अच्छे और प्यारे लगदे हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मंग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे, बहुत चंगा लगे, बगलगीर करन नू जी करे, फिर करन नू भी जी करता है, उस तो निछावर होने नू भी जी करता है, उस तो सदके होने नू भी जी करता है। सतगुरु कहिंदे तैनू कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु की संगत करदिया करदिया अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करता है, मंग मंगदा है। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, ए मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मेनू मौका दिता है, मंगो तो ओ अखां दे जिड़ियां तैनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन। इन्हां अखां ने बहुत कुछ देखा है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिन्हू वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रह ही नहीं जांदी। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जांदा है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे चा जांदा है, ओ मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जांदा है, बुजुर्ग हो जांदा है। सतगुर ए बुजुर्गी सारियां दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਮਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ ਲਵੋ 2.99 ਦਾ ਬੈਗ, ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 2.98 ਦਾ ਇੱਕ, 4 ਪਾਉਂਡ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਉਰਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਲਵੋ 4.99 ਦਾ ਬੈਗ।
4: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
5: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
5: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
4: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
5: ਫ੍ਰੀ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ

0: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-6790.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ

खाना पीना अमृत है, एक एक बुरकी अमृत है, शरीर दी लोड़ा नु पूरा करेगी। भुख नहीं है, हुण एक एक बुरकी जहर है, रोग है। इस वास्ते वैद धनंतर ऐलानिया कहिंदे सन, होर रोगां दा कोई कारण नहीं 90% आहार रोग, खाने पीने तो रोग पैदा हुंदा। आहार रोग, आहार चिकित्सा, आहार दारू, आहार ही औषधि है। खाना पीना औषधि है, खाना पीना रोग है। कीड़ा खाना पीना रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा फरमान कीता है, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। इस होर दे की अर्थ करोगे, निकम्मे चकरां च ना पै जाना। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, होर हुण होर खाई जांदा, भुख ते है नहीं, दो रोटियां नाल पूर्ति हो गई। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक यही अर्थ ने। मन मत नाल कोई अर्थ करे ते करदा फिर। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, खा रहे है, एक एक बुरकी रोग होवेगी, एक एक बुरकी जहर बनेगी, एक बुरकी शरीर दे अनर्थ पैदा करेगी। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। जरूरत तो खादा होया तन नू रोगी बनाएगा, मन नू विकारी बनाएगा, शक्ति अदक बनेगी, लोड़ नहीं। तो मैं अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। पर भुलेखे करके तन दिया लोड़ा नू मन ने अपनी लोड़ समझ ले, तो उदे नाल की आउंदा, तन ते लोड़ा दे तल ते सीमित रहिंदा, तन दिया लोड़ा मन दे तल ते लोभ बन जांदी। लोभ मन दे च आउंदा, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारियां ही तन दियां लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं है, वो की नहीं सीमित। मनुख लोड़ां करके बेईमान नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके धोखेबाज नहीं बनता, लोभ करके बनता। मनुख लोड़ां करके पापी नहीं बनता, लोभ करके बनता। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा में था, कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहने, पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लब ते पाप दोवें कट्ठे रहणगे, लोभ ते पाप दोहे कट्ठे रहणगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ां करके मनुख भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। लोड़ां दी ते सीमा है, कितनियां लोड़ां ने, बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तां भी लोभ शांत नहीं आउंदा, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह रही है, लखां पति भी मंगता है भुखा है भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है भुखा है भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहिंदे ने, सगल सृष्टि को राजा दुखी है। सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए, दुखी दा दुखी रहे। कारण, शरीर दियां लोड़ां नूं जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है। तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां समझ बैठा है। तन ते बनया रोटी तो, भोजन तो ठीक है, तू रोटी तो नहीं बनया, फिर तू किस तो बनया है? कहो कबीर ए राम की अंश,
ਕੁਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बधरो सुने, जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु रूप सत संग जीओ, फतेह प्रवान करने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया भर के इतिहासक ग्रंथों नूं वाचिए पढ़िए, इतिहास विच दो तरह के मनुख ही छाए हुए ने। इतिहासकारां ने अपनी कलम दे राही, अपने दिमाग दे राही सोच के जो लिखे है, उन्हां दी कलम दो तरह के मनुखां दे आले दुआले घूमदी रही है। सिर्फ एक मुल्क नहीं, सारी दुनिया का जो इतिहास है वो सिर्फ इंज कह लो दो तरह मनुखां दा ही इतिहास है। केड़े? प्रथम ओ जिन्होंने जगत दी झोली विच कुछ पाया है, कुछ दिता है, कला, ज्ञान, विज्ञान, सूझ समझ, धर्म, सुख, संपदा, कुछ भी झोली विच पाया होवे, उन्हां दा इतिहास है, उन्हां दी गल है। दूसरा उन्हां दा इतिहास है जिन्हां ने खोया है, खूब खोया है। जो खो नहीं सकिया, जो दे नहीं सकिया, इतिहास विच उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई गल नहीं है। तुसी पढ़ो दुनिया का इतिहास, बस दो तरह के ही मनुखां का इतिहास है। दिते होवे उसने कुछ, अपनी जान दिती होवे, अपनी सुख संपदा दे दिती होवे, कला दिती होवे, ज्ञान दिता होवे, विज्ञान दिता होवे, कुछ भी दिता होवे, या ते देण वाले इतिहास दे छाए हुए ने या खोण वाले। मनुख दे मन दे ते शक्ति दा प्रभाव है। ते मैं अर्ज करा कि दोवें शक्तिशाली आंदे ने, देण वाले खोण वाले। हाथ ही कमजोर ने, दिमाग ही कमजोर है, कोल कुछ भी नहीं, जगत नूं की देगा। पर कमजोर बंदा खो भी नहीं सकता, ताकत नहीं, समर्था नहीं, किस तरह खोवेगा। खोण वास्ते भी ताकत चाहिए है, देण वास्ते भी समर्था चाहिए है। किस वास्ते समर्थ मनुख इतिहास से छाए हुए ने? समर्थ मनुखां दा ही इतिहास है। मैं इस करां खोण वाले भी समर्थ ने, कुछ ना कुछ ताकत है। बिना ताकत तो कोई किसी का कुछ खो नहीं सकता। खोण वास्ते भी कोई शक्ति चाहिए है, देण वास्ते भी कोई समर्था चाहिए है। सियाणे कहिंदे ने इह जो देण वाले ने इह तीन तरह दे ने, और जिहड़े खोण वाले ने इह भी तीन तरह दे ने। इह देण वाले तीन तरह दे किहड़े ने? प्रथम मैं इहनां दा जिक्र करां, भगत, सूरबीर, दानी। खोण वाले तीन किहड़े ने? कातल, डकैत, दुराचारी। एक खोंदे ने, की खोंदे ने? कोई जान खोंदा है, कोई माल खोंदा है, कोई इज्जत, आबरू, असमत खोंदा है। तीन तल ते ही खतरा होंदा है, चौथा कोई खतरा नहीं। अगर कोई मनुख आके मैं खतरे दे चाहां, तो खतरा सिर्फ तीन तल ते होंदा है, चौथे तल ते खतरा नहीं होंदा। जान नू खतरा, माल नू खतरा, इज्जत आबरू नू खतरा, होर कोई खतरा नहीं होंदा। इतनी मैरज करने हैं। जो जान लई खतरा बन जाए वो कातल है, जो माल लई खतरा बन जाए वो डकैत है, ते जो इज्जत आबरू लई खतरा बन जाए वो दुराचारी है। संसार दे इतिहास दे छाए हुए ने।
देण वाले भगत सूरबीर दानी। भगत की देंदा है जगत नो, जो ओ नाम जपदा है, जपण दे नाल उहदे शरीर चों जो वाइब्रेशन बनदी है, जो तरंगा निकलदियां ने, जगत नू प्रभावित करदियां ने। भगत कबीर कहिंदे ने, कबीर सो मुख धन है, जै मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। देही दा दे कहना की सारा शहर पवित्र हो जांदा है भगत दी भगती नाल, अगर उसकी सुरत जुड़ गई है, अगर उसनू अध्यात्मक आनंद मिल रहा है, तो ओदियां तरंगां कईयां नू अंदोलित करनगियां, कईयां नू प्रभावित करनगियां, एकाग्रता बख्शने। भगत अपनी जुड़ी हुई सुरत करके चारों पासे प्रभावित करता है अपनी उन्हां तरंगां दे नाल, भगती दा दान देंदा है। सूरबीर जो कमजोर दी बांह पकड़दा है, मजलूम दी बांह पकड़दा है, ते कमजोर दी खातर अपनी जान तक दे देंदा है। संसार दे इतिहास विच सूरबीर छाए हुए ने, भगत छाए हुए ने। तीसरे दानी जो किधरे भी धर्म करम समाज इंसानियत मुल्क कौम दी तामीर लई, कला ज्ञान विज्ञान दी उसारी लई धन नू खर्च करदा है। तो ये तीन छाए हुए ने, भगत सूरबीर दानी एकाग्रता बख्शने। ये तीन देण वाले ने और तीन ही खोण वाले ने। जान नू खोण वाले, माल नू खोण वाले, इज्जत आबरू नू खोण वाले। खोंदे कौन ने शक्तिशाली, देंदे कौन ने शक्तिशाली। खोण दियां बिरतियां क्यों पैदा होंदियां ने असंतुष्टि करके, देण दियां बिरतियां क्यों पैदा होंदियां ने संतुष्टि करके। असंतुष्टि इस चों अधर्म दा जन्म होंदा है, संतुष्टि इस चों धर्म दा जन्म होंदा है। कहिंदे ने जो असंतुष्ट है उसकी दृष्टि अपने आप दे च नहीं होवेगी, अपने घर दे च नहीं होवेगी। असंतुष्ट मनुख की दृष्टि प्राय घर दे च होंदी है, दूजियां दे घर दे च होंदी है। बड़ी ही एकाग्रता बख्शनी। जैसे भगत जयदेव जी महाराज फरमान करते हैं, लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण। जो असंतुष्ट है उसकी दृष्टि प्राय घर दे चाहती है। लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण, ये आचरण तो गिरी हुई गल है कि कोई मनुख अपनी दृष्ट किसी दे घर ले जाए, दृष्ट नू नहीं रोक सकता। दृष्टि क्यों जाती है? असंतुष्ट है, लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण। असंतुष्ट मनुख की दृष्टि दूजे दे घर ते जाती है, वो अपने आप दे च नहीं आता। विद्वाना ने तीन तरह की असंतुष्टि मनी है, एकाग्रता बख्शनी। जरूर इस बच्चे नू बाहर ले जाओ कुछ ते थोड़ा जहा, क्योंकि ध्यान उचाट आता है, थोड़ी जी एकाग्रता आप जो है बख्शो। असंतुष्टि तीन तरह की होंगी है, परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। असंतुष्ट मनुख अपने घर दे च नहीं आता, उसकी दृष्टि अपने घर दे च नहीं होंदी, दूसरियां दे घर दे च होंदी है।
ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੈਸਾ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਏਗਾ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੁਚੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਗ੍ਰਹਿਣ ਜਦ ਬਿਦ ਆਚਰਣ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਗ੍ਰਹਿਣ ਜਦ ਬਿਦ ਆਚਰਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ ਹਉ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲ ਜਾਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੈਥੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਤੀਸਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਜੈਸੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਵਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ ਵੈਸਾ ਸੰਯੋਗ ਜੁੜਿਆ। ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ
मैं अवगुणा दा सागर, मुझ अवगुण सह ना ही दोस। बाबा फरीद कहने ने तू गुणा दा सागर है पर मेरे विच अवगुण तेरा कोई कसूर नहीं। इतना वड्डा महान फकीर यह भी अपने आप विच असंतुष्ट है कि जिस तरह का मैनू होना चाहिदा सी मैं वैसा नहीं हाँ। ये परमात्मा मैं वैसा नहीं हाँ, ये तीन असंतुष्टियां ने, परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि और व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये जड़ी असंतुष्टि है ये कातल डकैत दुराचारियों को जन्म देंदी। परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, दृष्टि दूजियां ते, तो किसी दिन दूजियां तक इस दे हाथ पहुंच जाते हैं, इसके पैर पहुंच जाते हैं और अपने आप नू काबू रखना औखा हो जाता है। सारी दुनिया दे कानून है, समाज दे नियम भी हैं, धर्म भी है, लेकिन धर्म नू तोड़ के, समाज दे नियम तोड़ के, कानून नू तोड़ के दूजियां दी जान माल असमत अक्सर जो है खो ली जाती है और खतरा रहिंदा है सारी दुनिया, क्योंकि सारी दुनिया असंतुष्ट लोगों नाल भरी पई है। जो जगत नू देंदे ने इन्हें भगत सूरबीर और दानी, जो खोंदे ने कातल डकैत दुराचारी। ऐसा ते देखा गया है कि तिन्ने ही अवगुण एको ही मनुख दे, वो कातल भी सी, वो डकैत भी सी, वो दुराचारी भी सी। तिन्ने गुण किसी एक मनुख दे नहीं देखे गए सन कि वह सूरबीर भी होवे, भगत भी होवे, दानी भी होवे। ये तीन गुण एक मनुख दे नहीं देखे गए सन। तीन अवगुण तो एको मनुख दे देखे गए और अक्सर इतिहास दे इस तरह के मनुख छाए हुए ने और रोजमर्रा की जिंदगी भी इस तरह के मनुख प्रगट होते रहते हैं कि वह कातल भी है, वह दुराचारी भी है और वह डकैत भी है। तिन्ने ही अवगुण एको ही मनुख दे, तिन्ने गुण एक मनुख दे नहीं अज तक प्रगट होए सन कि वह भगत भी होवे, वह सूरवीर भी होवे, वह दानी भी होवे। इतिहास खाली से इसकी पूर्ति की धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। वह भगत ऐसा है कि मैदान जंग विच भी जे अमृत वेला हो गया तो समाधि ला के बैठ जाना और खो जाना परमात्मा दी दुनिया च लीन हो जाना। वो सूरवीर ऐसा है कि सवा लख नाल भी घिरिया होवे ते उसका हौसला पस्त नहीं आउंदा सी, वो हिम्मत नहीं हारदा सी, उहदी सूरवीरता दे फर्क नहीं पैंदा सी। और वो दानी ऐसा सी, अज तक इस तरह दे दानी होए ने जगत दे च, कोई अन्न दे दानी, धन दे दानी, जमीन दे दानी, वस्त्रां दे दानी, ते सोना चांदी दान करन वाले। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल लकब जुड़े होया सरबंस दानी, सब कुछ दान कर देना। वो भगत भी है, वो सूरबीर भी है, वो दानी भी है। कहिंदे ने सूरवीर होने लई, दानी होने लई, भगत होने लई मन दे संतुष्टि दा होना बड़ा लाजमी है। बिना संतुष्टि तो ना कोई भगत बन सकदा है, ना कोई सूरवीर, ना कोई दानी। और बिना असंतुष्टि तो ना कोई कातल बन सकदा है, ना कोई डकैत बन सकदा है, ना कोई दुराचारी। और असंतुष्ट मनुख दे कोल अगर ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, सता आ जाए तो फिर ते बहुतियां दी जिंदगी खतरे च होवेगी, फिर ते बहुतियां दी इज्जत खतरे च होवेगी, फिर ते बहुतियां दी जान खतरे च होवेगी, बहुतियां दा माल खतरे च होवेगा अगर असंतुष्ट मनुख दे कोल शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए। कानून कहिंदे ने कमजोर मनुखां दे लई है, ताकतवरां लई नहीं है। कमजोर की है, जो है कानून की है, एक मकड़ी का जाला जिद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जाते हैं, हाथी तोड़ के लंघ जाते हैं। यह भी मैरज करते हैं।
असंतुष्ट मनुख दे कोल अगर शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए, तो वो जितनिया तबाहियां नू जन्म दे सकदा है। एक दफा ते इतिहासकार भी कम उठते हैं, उन्हां दी कलम भी कम उठती है, उन्हां दी लेखनी भी कम उठती है। ईरान का एक महान प्रसिद्ध सूफी फकीर होया शेख सादी, वो कहिंदा है, ई चुनी अरकान ने दौलत मुल्के वीरां में शबद। अगर इस तरह का साजो समान किसी मुल्क विच जमा हो जाए तो कहिंदा समझ लो मुल्क वीरान हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। किस तरह का साजो समान, कैसा साजो समान, वो इसकी व्याख्या करता है। गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शबद। जिड़ा मीर है, राजा है, हुक्मरान है, वो ऐसा होवे जैसा गुर्ग बग्याड़। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी अपने ढंग नाल व्याख्या की थी, राजे शी मुकदम कुत्ते। बहुत सुंदर नक्शा खिंचया है अपने दौर विच, अपने समय विच जो वातावरण सी। ए फकीर कहिंदा मैं नजूमी ते नहीं हाँ, मैं ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं फिर भी दस सकदा कि अगर इस तरह का साजो समान किधरे जमा हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाता है, मुल्क नेस तो नाबूद हो जाता है, वीरान हो जाता है, उजड़ जाता है। इन चुनी अरकान ने दौलत मुल्के वीरां में शबद। कैसा साजो समान, कहिंदा गुर्ग मीरो जिस देश दा राजा बग्याड़ होए, सग वजीरो ओदे जिहड़े वजीर होवन ओ कुत्ते होवन, ओ चीरे फाड़े ते ओदा बचिया कुचिया ए कुत्ते खान। गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शबद। दीवान जेड़ा है जो प्रजा दी गल हुक्मरान तक पहुंचावे, वो ऐसा होवे जैसे मूश चूहा। हिंदी च भी मूसा कहंदे ने, परशियन दे च भी मूश कहंदे ने। मूश दीवा में शबद, दीवान जेड़ा है वो मूश होवे, वो प्रजा दी गल टुक देवे, असलियत पेशी ना आउण देवे। चूहे दा कम की है, टुक देना, भावें वह खावे भावें ना खावे पर टुक देता है। टुकना उसकी फितरत, टुकना उसकी सुभाव। इतनी ईर्षा होवे टुक देवे। दीवान ऐसे अवन जैसे कि चूहे। मैं देखना सिख जगत नो काफी समय तो कई चूहे टुक दे पे, इना दा परोपकार, इना दी शहाद टुक के रख दो। भई इतिहास देश देश नू आजाद कराया है, इनिया कुर्बानियां टुक दो। ये दानी ने, ज्ञानी ने, अमृत वेले उठण वाले ने, नाम जपण वाले ने, परोपकारी ने, सब कुछ टुक दो, कट दो, टुक दो इतिहास नू, टुक दो सच्चाई नू। चूहा टुक देंदा है। शेख सादी का यह बड़ा सोहना एक कलाम, कहिंदा मूश दीवा में शबद। जिहड़ा दीवान है ना, यह मूश होवे, चूहा होवे, असलीयत नूं ही टुक के रख देवे, असलीयत जाहिरी ना आउण देवे। कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले जब सूबा सरहंद दी कचहरी विच पेश कीते गए, तो कहिंदे उस वक्त 17 जज ही बैठे सन, मतलब जिहड़ी महफिल राजसभा दी दरबार लगया, 17 मनुख बैठे सन ते 17 ने फैसला देना सी। नवाब मलेरकोटला सी, इस दे विच दीवान चंदू सी, इस दे विच काजी सी, इस आले दुआले दे रजवाड़े सन, और खुद आप बैठा सी
ਨਵਾਬ ਵਜੀਦ ਖਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜੀਦ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण @604581 1900

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस

0: इस धंधे दे चौंगी धर्म दी इतनी उज्जवल महक पैदा हुई। आपने सिंध प्रांत देच थां थां ते भ्रमण करके लोगां नूं खुदा दे नाल जोड़िया, जीवां नूं परमात्मा दी धुन दे नाल जोड़िया। जद एक फुल खिड़ पैंदा है महक वंडन लग पैंदा है, जद एक दीवा जल पैंदा है रोशनी वंडन लग पैंदा है, जद किसे हिरदे विच आत्म प्रकाश हो जांदा है वो चानना वंदन लग पैंदा है, वो सुख चैन वंडन लग पैंदा है, वो आनंद वंडन लग पैंदा है। और ये वंडना उस तो सुते सुत होंदा है, अपने आप होंदा है। जैसे फुल दे चों सुगंधी दा निकलना दरअसल उस विच महक दा अदक होना है, इस वास्ते डुल डुल के वो बार पई पैंदी है। भगत दा हिरदा इतना आनंद नाल भर जांदा है, इतना गुणा नाल भर जांदा है, इतना शांति ते चैन नाल भर जांदा है कि वो डुल डुल के बार पैंदा है। सजना जी भक्ति भाव विच ऐसे लीन होए और अध्यात्मक गुणा नाल ऐसे भरपूर होए, थां थां ते भ्रमण करके इन्हां ही गुणा नूं वंडदे रहे, इसी सच्ची दौलत नूं वंड वंड के जगत नूं अकाल पुरख दे नाल जोड़दे रहे। अनेकां भगतां दे चों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच इक ए सदना कसाई पेशे विच ए भी भगत है, इसका भी कलाम है और इसका कलाम भी रहिंदी दुनिया तक अध्यात्मिक शांति वंडदा रहेगा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਮਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ ਲਵੋ 2.99 ਦਾ ਬੈਗ, ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 2.98 ਦਾ ਇੱਕ, 4 ਪਾਉਂਡ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਉਰਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਲਵੋ 4.99 ਦਾ ਬੈਗ।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: इको एक हरमन प्यारा ग्रोसरी स्टोर फ्रूटी कैना जिन्हां दे प्राइसेस होलसेल नालों भी घट हन। फ्रूटी कैना दी नवी लोकेशन साउथ सरी विच खुल गई है 29901 52 स्ट्रीट। इस हफ्ते दे स्पेशल हन 21 अगस्त तो 26 अगस्त तक। 4 पाउंड इंडिकन मसर अते साबत लाल मसर लवो 2.99 दा बैग। वड्डा साइज गोभी दा फुल 2.98 दा एक। 4 पाउंड धोती हुई उर्द दाल अते मूंग दाल लवो 4.99 दा बैग।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा ओदों तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
5: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
6: Radio Station 1550 AM Gurbani segment tuhade tak. Swargvasi Sardar Ajit Singh di baad Swargvasi Mata Surinder Kaur baad di yaad de vich 1550 AM ton Gurbani प्रचार किया जाता है। 1550 रेडियो दे उत्ते गुरबाणी दे किसे भी प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन वास्ते 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ 29901 52 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 16.98 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 16.98 ਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ, ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਔਰੇਂਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਵੋ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।